गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

अरे टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

एक कहानी सुनोगे? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफरीन स्वागत करती है आपका राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और एक प्यारी सी कहानी आपको सुबह सुबह सुनाना चाहूंगी मैं। वो कुछ इस तरह से कि एक रेलवे स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे थे। एक की ट्रेन 6:30 बजे आई सुबह के, दूसरे की ट्रेन 7:15 बजे आई, और फिर तीसरे की ट्रेन जो है वो 8:45 AM को आई सुबह। ठीक है, अब कुछ ट्रेन्स फास्ट थी, कुछ ट्रेन्स काफी सारे स्टॉप्स लेते हुए आई, कुछ ट्रेन्स का पूरा रूट ही लंबा था, और कुछ ट्रेन्स जो है वो बहुत दूर के शहरों से आई है। लेकिन यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा वो 8:45 वाली ट्रेन जो सबसे लास्ट में आई कि भाई तुम 6:30 बजे क्यों नहीं आ सकते थे, तुम क्यों इतना लेट आए। क्योंकि लोग जानते हैं कि हर एक ट्रेन का अपना एक रूट होता है, अपना एक डिस्टेंस होता है, वो अपने स्टॉप्स कवर करके आएगी और वो उतना ही टाइम लेकर आएगी। लेकिन एज ह्यूमंस, हम इंसान ये क्यों भूल जाते हैं? सिंपल सी बात, हम किसी और की जब अचीवमेंट्स देखते हैं या फिर उनके माइलस्टोन्स देखते हैं, जैसे कोई घर ले रहा हो, कोई बिजनेस बना रहा हो, कोई कामयाब हो रहा हो, कोई शादी कर रहा हो, और सडनली हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं इन सब में। लेकिन नहीं, आप कहीं पीछे नहीं हो, आपका तो रूट ही अलग है ना। आपने थोड़ी ना कोई और स्टेशन से शुरुआत की थी, ना आपके वो सिग्नल्स थे, आपके ट्रैक्स अलग थे, आपके डिलेज अलग थे, आपका सपोर्ट अलग था, आपके वो तूफान अलग थे, तो आपका अराइवल टाइम उनके साथ ही कैसा हो सकता है? नहीं, शायद आप लेट नहीं, शायद आपका जो रूट है वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल ही अलग है। तो बस कभी कभार इस कंपैरिजन के पूरे झमेले में या फिर इस ख्याल में आप आ जाओ तो यही याद रखना कि आप लेट नहीं हो, आपका रास्ता अलग है। और इसी खूबसूरत ख्याल के साथ दिन की शुरुआत करते हुए मैं सिंपली आफरीन माइक से दिल तक राइटर अन मिर्ची आपका स्वागत करती हूँ। बने रहेगा मेरे साथ अन मिर्ची इट्स हॉट। ला ला।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं है? राकेश तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं, मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बाक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोलो कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स हॉट।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।

0: number one radio station.
1: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

अच्छा मुझे सच सच बताओ कि आप वॉलेट घर पर रहने पर ज्यादा पैनिक होते हैं या फिर फोन भूलने पर ज्यादा पैनिक होते हैं? देखो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं फोन अगर घर पर रह जाए तो ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि भाई फोन ही आजकल हमारा मिनी बैंक बन चुका है, राइट? एंड कतर ने डिजिटल कन्वीनियंस को एक और लेवल अप कर दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया है कि अब हिमियन कार्ड होल्डर्स एप्पल पे के थ्रू एटीएम से कैश विदड्रॉवल और बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकेंगे। मतलब फिजिकल कार्ड भूल गए, नो वरीज, अगर एटीएम इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है तो सिर्फ अपने आईफोन या एप्पल वॉलेट के जरिए काम हो जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? ये सिर्फ कन्वीनियंस की स्टोरी नहीं है, ये ट्रस्ट और सिक्योरिटी की भी स्टोरी है। एंड ये हम कैशलेस सोसाइटी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन कैश की जरूरत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। डिफरेंस बस इतना है कि पहले एटीएम तक कार्ड ले जाना पड़ता था, अब एटीएम तक फोन ले जाना पड़ेगा। That's getting even more convenient day by day. देखिए कतर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइटली लेकिन कॉन्फिडेंटली बिल्कुल इवॉल्व होते जा रहा है। मेट्रो से पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स और अब कार्ड के बिना एटीएम विड्रॉवल, क्या बात है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ जुड़े रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा जोरों शोरों से भागना और प्रोग्रेस की तरफ दौड़ लगाना। कभी कभार थोड़ा सा पॉज लेकर थमना भी बहुत जरूरी होता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को, और आज की खबर ये है कि देखिए, कतर रेल ने अनाउंस किया है कि लुसेल ट्राम सर्विसेज 26 जून से लेकर 5 जुलाई तक टेम्परली सस्पेंड रहेंगी, क्योंकि नेटवर्क पर मेजर इम्प्रूवमेंट वर्क्स होने वाले हैं। देखिए, रिप्लेसमेंट बस सर्विस लेकतफिया स्टेशन से तरफात साउथ स्टेशन तक चलेगी, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, ताकि कम्यूटर्स की जर्नी ना बिल्कुल स्मूथ रहे। इसके अलावा एग्जिस्टिंग मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो लिंक सर्विसेज, इंक्लूडिंग नया मेट्रो लिंक रूट IM154, आई रिपीट, इट्स M154, ये भी एरिया सारी कवर करेंगे। सो बस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतने दिन तक रुकने वाली है और फिर हमारा कम्यूट कैसा होगा, प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आपके जानने वाला कोई ट्राम यूज़ कर रहा है तो उन्हें बताइए, भाई सारे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है। वो कहता है ना, प्रोग्रेस की रेल जो है कभी कभी प्लेटफॉर्म पर रुकती जरूर है, लेकिन डेस्टिनेशन हमेशा बेटर फ्यूचर ही होता है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
2: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
3: मिर्ची, इट्स हॉट। Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 310008.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: देखो साल का वो टाइम चल रहा है कतर में जब कतर धीरे धीरे से खाली होते जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर में समर की वेकेशंस शुरू होने वाले हैं। अब बस मेरे ख्याल में ये आखिरी महीना है फॉर ऑल द किड्स आउट देयर, और उसके बाद क्या है, आहिस्ते आहिस्ते सारे लोग वेकेशंस बनाने जाएंगे। कोई इंडिया कोई पाकिस्तान, जब होम टाउन जाते हैं ना तब थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए जाते हैं इस वक्त पर, क्योंकि क्या है कि छुट्टियाँ लंबी मिलती हैं। एंड एट दिस टाइम जब आपके ट्रैवल में आपको और थोड़ी सी सहूलियत मिले तो कितनी अच्छी बात होगी ना। यस, तो जैसे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप जब जाने वाले हो तब वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रोलर सर्विस फॉर चिल्ड्रन ये शुरू हो चुकी है। देखिए 300 तकरीबन स्ट्रोलर्स अवेलेबल है, और इसके लिए पता है मजे की बात कि कोई भी प्री बुकिंग और रजिस्ट्रेशन कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। बस सीधा पैसेंजर्स कैन पिक अप द स्ट्रोलर्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रोलर नेस्ट लोकेटेड अक्रॉस द टर्मिनल। अब ये जो नेस्ट लोकेशंस है स्ट्रोलर के, ये कॉन्कोर्स ए बी सी डी ई हर जगह आपको ये नजर आएगी। ये कितनी ज्यादा बून है ये तब पता चलता है जब आप कहीं ट्रैवल करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स विद इन द एयरपोर्ट भी काफी वॉकिंग रहती है और एयरपोर्ट की जो टाइम्स होते हैं फ्लाइट्स के कभी कभार थोड़े से ऑब्जर्व हो जाते हैं कि एकदम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, जिसकी वजह से बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं अपनी नींद की वजह से। सो ये स्ट्रोलर ऐसे वक्त में बहुत ही काम का आएगा। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100 on 100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर होते ही नजर आते हैं और कुछ लोग जाने के बाद भी याद रहते हैं, और वो फर्क बस थोड़ा छोटा सा है। फर्क बस उनकी खुशबू का है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं मेरी तरह जो परफ्यूम को सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन मानते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। यस, दोहा का मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम एग्जीबिशन दैट इज तीब अल हजम, इट इज कमिंग बैक। और ये 25 जून से स्टार्ट होने वाला है और 4 जुलाई तक रहने वाला है। यहां आपको मिलेंगे ट्रेडिशनल अरबिक ऊद, बखूल, लग्जरी फ्रेग्रेंस और कई प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड एक ही छत के नीचे। मतलब मैं पिछली बार गई थी एंड इट वाज नॉट इनफ, मतलब एक बार नहीं दो बार गई थी एंड लिटरली वहां पर मैंने देखा कि लोग ट्रॉली भर भर के परफ्यूम्स लेते हैं। कुछ तो बात होगी उसमें, इसीलिए राइट। सो इफ यू आर रियली अ परफ्यूम लवर, यू शुड नॉट मिस तीब अल हजम इन अल हजम मॉल। वेल, ओपनिंग डे पर जो है वो शाम के 6:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, रात के 11 बजे तक रहेगा। उसके अलावा वीकडेज में 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, फ्राइडेज को 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। मैं हूं आफरीन आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La birba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लग
3: नहीं
2: रहा है?
3: वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा यार रिक्शा, तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
3: नहीं।

0: जब मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो और मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट। फिर से

0: देखो कभी कभी वीकेंड का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि कहाँ घूमने जाना है, ये भी होता है कि भाई हमारा रिमोट कौन से OTT ऐप पर अब आके रुकेगा। पर अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हो जहां पर टीवी चालू करने के बाद 20 मिनट तो सिर्फ आप स्क्रॉल करते हो, ये सोचते हो कि क्या देखा जाए और उसके बाद में कुछ पुराना सा ही लगा देते हो, देन दिस इज फॉर यू।
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: वेल देखिए, OTT मार्केट में बहुत कुछ नया आया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 के बारे में। TVF की मेकिंग है तो समझ जाइए वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत बनाया है। एंड अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है ना, इट इज रियली नाइस, फनी भी है, एट द सेम टाइम इट हैज एम्पैथी, लाइक पंचायत बताता है, बस उसी लाइन पर है। स्टोरी टेलिंग स्मॉल टाउन की है, रिलेटेबल कैरेक्टर्स है, तो ये सीरीज आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। एंड इस बार डॉक्टर प्रभात की जर्नी और भी चैलेंजिंग होने वाली है, विद करप्शंस, इमोशंस और विलेज लाइफ के रियल इश्यूज। कमिंग अप नेक्स्ट, अगर आप फैमिली ड्रामास के फैन हैं, बिल्कुल मेरी तरह गुल्लक के फैन एंड सो मेनी मोर, देन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज परफेक्ट फैमिली सीजन 2। ये भी सोनी लिव पर आने वाला है एंड दिस कुड बी योर परफेक्ट बिंज पार्टनर। कॉमेडी भी है, केयर्स भी है, और इस तरह से जो फैमिली ड्रामास होते हैं ना कहीं कोई सीन्स में आपको अपनी फैमिली नजर आती है। सो फैमिली, परफेक्ट फैमिली सीजन 2 ऑन सोनी लाइव, दिस इज वन थिंग। उसके अलावा अगर आपको रियलिटी शोज में, स्ट्रैटेजी माइंड गेम्स में और ट्रस्ट इश्यूज देखने का शौक है तो अलायंस जरूर चेक करिएगा। कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जहां दोस्ती भी होगी, डिप्लोमेसी भी होगी और बिट्रेयल भी होगा, मतलब समझ जाइए कुछ बिग बॉस और सर्वाइवर्स के फैंस यहां पर मिल गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट। नाउ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, OTT कॉन्टेंट अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, आजकल हर जॉनर का अपना एक इकोसिस्टम है। एक तरफ विलेज इंडिया की स्टोरीज चल रही है, दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल फैमिली ड्रामास चल रहे हैं, तो तीसरी तरफ स्ट्रैटेजिक रियलिटी फॉर्मेट्स चल रहे हैं। ऑडियंस का टेस्ट भी अपना काफ़ी इवॉल्व होते जा रहा है, राइट? सो आप बताइए मुझे कि आप इनमें से क्या चूज करते हो और वॉट इज योर प्रेफरेंस जनरली वेन यू वॉच OTT, रोमांटिक, क्राइम सीरीज, फैमिली ड्रामास या कुछ और ही? 5000 1896 इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट योर मी वाइल। अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्शी माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।

0: कि इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन मिर्ची मॉमी सीजन 5 के दिन हमने वहां पर विटनेस भी किया। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मिर्ची मामी सीजन 5 की विनर उर्मी इज देयर। हे उर्मी, बातें चल रही है हमारी और उर्मी इतनी खुश सी है, वैसे ही उनकी स्माइल अच्छी है, लेकिन एक अलग ही रौनक आ गई है आपके चेहरे पर, है ना, ये टाइटल जीतने के बाद। वेल, मैं यहाँ पर डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रही थी एंड आई वॉज वेरी अमेज टू सी के जब इंट्रोडक्शन राउंड में कोई राजस्थानी आउटफिट पहन के आया है एंड यू वर representing
1: Assam ka,
0: yes,
1: jo so traditional dress hai.
0: Exactly, I want to know more about it because out of all the 16 contestants, mm-hmm. Urmi had the most unique outfit aur usme unhone ek apna ek alag hi huge x factor laya tha. What was that?
1: Okay, so exactly jo hamara attire hai Assam ka wo hai two piece hota hai, sador hota hai jo hum chunni ki tarah drape karte hain, jo saadi jaisa dikhta hai, aur niche hum mekhla pehante hain jo fold karke hum usko saadi ke plates ki tarah pe fold karke dalte hain. So ye jo टू पीसेस है वो अलग अलग फैब्रिक्स के भी बनते हैं। आप सिल्क का मेजरली हमारा फेमस है, मुगा फेमस है, जो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में आसाम में ही मिलता है। मुगा के जो वर्म्स होते हैं उनके थ्रेड से बनाया जाता है। तो जो मेरी बेटी थी उसने मुगा पहना था।
0: हाँ, दैट इज सो क्यूट कि माँ बेटी दोनों सारीज ही है, राइट?
1: हाँ,
0: सारीज में थी, बिल्कुल अच्छी लग रही थी। और वो ऐसा बड़ा सा जो था,
1: वो मैंने प्रॉप बनाया था। एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहती थी कि कैसे मेरे बच्चों के थ्रू मदरहुड मुझे रिवील्ड हुआ है पेटल by petal and the whole mother becomes a flower to me, like मैं वो दिखा रही थी। तो उसमें total different features थे, nurturing था, being a teacher था, protector था, inspiration था। तो ये सारी चीजें डाल के मैंने एक एक petal पे एक value fit किया था और उसको मैंने beautifully orange और yellow से color किया था क्योंकि वो मेरे outfit के साथ contrast जाए और वो effect वैसा दिखे।
0: I mean that was so lovely to see और आप इतनी अच्छे से gracefully वो लेकर चल कर आई। That was definitely the X factor of your round one. लेकिन round two भी कुछ कम नहीं था। Round two के बारे में तो हम बहुत बातें करेंगे यहाँ पर। In fact, Urmi is going to entertain you as well. थोड़ी ही देर में। So you gotta stay tuned with us. That is Mike Sidhil Tak Afreen and Mirchi Mommy. Season 5 winner, Urmi.
1: Urmi.
0: Yes, it's hot.
1: It's hot.
2: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
4: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
4: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown.
4: Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
8: Mere bete aayenge. Mere Karan Arjun aayenge.
9: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
10: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
11: FM।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आमिर खान पीके वॉज एन आइकॉनिक फिल्म, कई सारे आइकॉनिक सीन्स थे। Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
2: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई, क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ। मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे, और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है। उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी, चूना और कत्ता होता था।
1: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, दिन के 100 पान कौन खाता है यार। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
3: Only on Mirchi It's Hot
4: अर्ज किया है
5: इरशाद इरशाद

0: अक्सर मैं कहती हूँ कि कभी कभार कुछ गाने होते हैं उसके बाद में मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ, कुछ बोल नहीं पाती हूँ. और ऐसे ही कभी कभार कुछ परफॉर्मेंसेस होते हैं जो देखकर हम इतने ज्यादा एस्टोनिश हो जाते हैं. और ऐसे ही कुछ किया था हमारा हाल मिर्ची मौमी में. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्टरनून है आपके साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और बातें हो रही हैं विद उर्मी, मिर्ची मॉमी सीजन 5 की विनर. हे उर्मी.
1: या आई एम हियर ओनली. इट्स नॉट.
0: देखिए उर्मी, आपने जो राउंड 2 में यानी टैलेंट राउंड में ऐसा परफॉर्म किया दैट वी जस्ट डिडंट वांट यू टू स्टॉप. हमें ऐसा था कि आपने पूरा समय बांध लिया था एंड यू जस्ट हैड 3 मिनट्स टाइम एंड इट्स क्वाइट अ चैलेंज कि 3 मिनट्स में सबका अटेंशन ग्रैब करना, इम्प्रेस भी करना, अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस भी देना एंड यू जस्ट नेल्ड इट. लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने गाना गाया था एंड इट्स नॉट जस्ट सिंगिंग, जस्ट अमेजिंग. एंड यू हैव टू सिंग. लोग थोड़ी बिलीव करेंगे, आप गाओगे तो बिलीव करेंगे, राइट?
1: बिल्कुल, क्यों नहीं. तो मैं कौन सा गाना गाऊँ?
0: आपने कितने गाने गाए पहले तो वो बताएं.
1: मैंने 4 गाने लिए थे, लग जा गले, आज की रात होना है क्या, डॉन का जो सॉन्ग है, रात बाकी बात बाकी, और फेमस रंबा हो.
0: You ended on that. What a bang. You ended on. So I want to listen to that track, रात बाकी बात. I love that song.
1: Okay, here it goes.

0: सोचो ना, देखो तो, देखो ना मुझको, हाँ प्यार से। थैंक यू।
1: क्या बात है यार,
0: उर्मी यू आर टू गुड। लेकिन वो कहते हैं ना, मेरा तब भी जी नहीं भरा और अब भी जी नहीं भरा। एंड एक और गाना हो जाए उर्मी।
2: एक और कौन सा?
0: क्योंकि तुम आसाम से हो,
2: हाँ,
0: तो जुबिन गर्ग का एक गाना क्यों ना।
2: ओके, गुड गुड। ओके, जुबिन गर्ग का मैं हिंदी सॉन्ग गाऊंगी जो बहुत फेमस है, या अली।
1: ऑफ कोर्स, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, प्लीज गो अहेड।
2: ओके ओके।
0: मुझे कुछ पल दे गुर्बत के, फकीरम तेरी चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल दो राहत के, चाहत के इश्क।

0: यार पे कुर्बान सभी.
1: Wow, I just couldn't wait and stop myself. मैं भी गाना चाहती थी, but I cannot match to your singing level. Too good on me. And इस पर जरूर हमें सुनने वाले सारे listeners को यकीन आ गया होगा कि भाई विनर बनी है, कुछ वजह से बनी है और इसी वजह से बनी है. मैं हूँ आफरीन आपके साथ और साथ में है मिर्ची मम्मी सीजन 5 विनर और मी. You gotta stay tuned with us on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
1: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूं?
2: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ।
3: रख
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: देखो, जिसे ने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरीन कोर राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और मेरे साथ है मिर्ची मॉमी सीजन 5 की विनर, दैट इज उर्मी मला। यस उर्मी, एज आई लाइक टू कॉल यू स्वीटली, उर्मी बहुत अच्छा नाम है, उर्मी मला भी अच्छा नाम है। लेकिन उर्मी, जैसे आप विनर बनी हो, आपकी शुरुआत कहीं से हुई है, और अक्सर कहते हैं ना कि लेडीज, अब लेडीज मॉमीज इतनी ज्यादा टाइड अप होती है ना अपने बच्चों में, फैमिली में, घर में, और निकलना ये थॉट ही, घर से निकलकर कुछ करना ये थॉट ही सबसे लास्ट आता है खुद के लिए, है ना?
1: बिल्कुल।
0: एंड उर्मी, जैसे तुम्हें किसी ने इंस्पायर किया था, एंड दैट वाज कोइंसिडेंटली अ मिर्ची मॉमी,
1: यस यस यस,
0: वैसे ही तुम क्या मैसेज देना चाहोगी टू ऑल द मॉमीज आउट देयर हु माइट गेट इंस्पायर्ड एंड जॉइन अस इन आवर नेक्स्ट सीजन?
1: ओके, सो मैं कहूंगी कि वही बात जो बोलते ना, कहीं जाने पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। सो आपको अपने लिए सेल्फ लव होना चाहिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप सबसे पहले बहुत अच्छे दोस्त बना लेते हो, आप कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर होके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने पे अपने आप पे एफर्ट्स डालते हो।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे ही आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो, आपको अपने आप से और प्यार होता है कि मैं आप कैसे अच्छी दिखूं, मैं अपने लिए क्या करूं, मैं किस तरह से अपने आप को सबके सामने बोलने के लिए कहूं, लाइक व्हाट शेल आई बी स्पीकिंग ऑफ एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं, और इवेंचुअली वो कहाँ हेल्प करती है, आपके बच्चे आपसे देख के वही सीखते हैं।
0: Absolutely.
1: तो आपके बच्चे आपसे इंस्पायर होते हुए देखते हैं, मेरी मम्मी इतना मेहनत कर रही है, ऐसा कर रहे, तो घर से ही मैं सीखूं ना, तो मतलब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए एग्जांपल सेट कर दीजिए, बाकी तो बच्चे अपना सीख ही लेंगे, बहुत स्मार्ट है आजकल के बच्चे।
0: बहुत ही सही बात कही है, यूं ही थोड़ी ना राउंड 3 में भी ये जीत कर क्वेश्चन आंसर के इसमें आगे आके जीती है। वेल, और उर्मी, बड़े बुजुर्ग हमारे घर के ये कहते हैं कि एक घर खुश रहने की रेसिपी ये है कि घर की औरत खुश रहना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के मेल्स बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, तो बस आप भी ऐसे ही कुछ फॉलो कीजिए, एंड ऑल द मॉमीज आउट देयर गेट इंस्पायर्ड एंड यू शुड जॉइन अस इन आवर नेक्स्ट सीजन ऑफ मिर्ची मॉमी, दैट्स गोना बी सीजन 6। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस उर्मी।
1: थैंक यू सो मच आफरीन।
0: एंजॉय, सेलिब्रेट, एंड यस, कीप अप द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड दैट लवली स्माइल।
1: और मैं आखिरी में सब स्पॉन्सर्स को भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपना वक्त देकर इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट हमारे लिए डिसाइड किए और दिए गए, एंड वो सैश, वो क्राउन, एवरीथिंग इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट। और बाकी वो जो मोमेंट था, उस तरह से हमें इतना स्पेशल फील कराया ईच एंड एवरी मोमेंट। जो 16 फाइनलिस्ट थी, हम लोग आपस में यही बात किए हैं कैसे मिर्ची ने हमें इतना स्पेशल फील कराया। ऑल थैंक्स गोज टू आरजे आफरीन, आरजे अंशु, आरजे गौरव, जिन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया है। एंड साथ में साथ ऑब्वियसली हम अगर बात करें तो जो भी हमारे बैकएंड सपोर्ट में थी, अंकिता थी, जारा थी, उन लोगों ने भी काफी हमें सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, कीप डूइंग दिस एनकरेजिंग वर्क फॉर अस, एम्पावर अस, थैंक यू सो मच।
0: मेरा तो दिन बन गया, हाई एकदम बन गया, ये मैडम जी आई है एकदम मुस्कुराते हुए स्टूडियो में और मेरा दिन बना दिया। फिलहाल के लिए आई एम श्योर शी स्प्रेड द पॉजिटिविटी टू यू एज वेल। मैं हूँ आफरीन, साथ में है उर्मी, यू गॉट अ स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय, सायोनारा।
1: इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: vidba la burka. Milci, burka. हेलो
2: हेलो भाई राजा, ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मेहनत पे पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: कर दे, मैं तो कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूँ बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है? क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
3: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100-0813।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कभी कभार अपने इमोशंस, अपनी बातें, एहसास, ये सारे लफ्ज़ों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये शायर लिरिसिस्ट बखूबी जानते हैं ना। इसीलिए कभी कभार कहते हैं ना कि गाने आपके इमोशंस को बहुत ही बखूबी पेश कर देते हैं। और ये मैजिक कैसे होता है? ये मैजिक उन लिरिसिस्ट की वजह से होता है जैसे जावेद साहब है, इरशाद कामिल है, गुलजार साहब है। और आज मेरी डायरी से मैंने गुलजार साहब की कुछ लाइंस आपके लिए लेकर आई हूँ।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
0: शायरी। तो अर्ज किया है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो मुझे बितानी है तेरे बगैर, एक उम्र है जो मुझे बितानी है तेरे बगैर, और एक लम्हा है जो मुझे गुजारा नहीं जाता। क्या बात है, गुलजार साहब ऑलवेज सरप्राइजेस अस एंड टेल्स अस हमारी फीलिंग्स उनके शब्दों में। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: IPAY payments ka wah tarika. With IPAY, send money starting from just QAR5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPAY app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPAY, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बचपन का समर वेकेशन याद है आपको? जब हमारे स्कूल बंद हो जाते थे, होमवर्क की बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी और घर में सिर्फ एक ही सीजन होता था, वो था मैंगो सीजन। सुबह आम, दोपहर आमरस, शाम को आम पन्ना और मम्मी का एक डायलॉग, बस करो अब, इतने आम मत खाओ चेहरे पर दाने निकल आएंगे। वही घमोरियाँ कहते हैं हिंदी में, राइट? इंग्लिश में उसे हीट ट्रैश या प्रिकली हीट कहते थे। लेकिन बचपन में हमें किस बात की फिक्र थी, आम भी मज़े से खाते थे और वेकेशन इतनी लंबी होती थी कि रिकवर करने का पूरा अच्छे से वक्त जाता था। अब मुझे लगता है कि कतर में रहने वाले लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त पर। गर्मी अपने पीक मोड में तो ऑलरेडी है और मैंगोस फुल स्विंग मोड में है और लोगों ने भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। वेल, अगर सूक वाकिफ के इंडियन मैंगो एग्जीबिशन की बात करें तो इस साल तो भाई कमाल ही कर दिया है। सिर्फ पिछले 5 दिनों में 84 टन मैंगोज बिक चुके हैं, आई मीन वाओ, जबकि पिछले साल इस ड्यूरेशन में ये फिगर 56 टन था और विजिटर्स वो भी ज़्यादा हो गए हैं। दिस टाइम इट इज़ 74,000 अब तक के, कंपेयर टू अराउंड 52,000 लास्ट ईयर, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मतलब सिंपल सी बात है, कतर की पब्लिक ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि भाई मैंगो सीजन को हाफ हार्टेडली नहीं, इनफैक्ट होल हार्टेडली सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑनेस्टली मौका भी तो साल में एक ही बार आता है ना। अब चाहे अल्फांसो हो यानी हापुस, केसर हो, लंगड़ा हो या चौसा हो, जब सीजन आए तो उसे पूरी तरह से पूरे एंथुजियाज्म के साथ में खाकर इंजॉय करना चाहिए। ये तो मेरा मानना है कि भाई खाओ पियो मस्त रहो। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट यू ऑन मिर्ची इज हॉट।
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
2: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
1: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हेलो शार्प्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर होते ही नजर आते हैं और कुछ लोग जाने के बाद भी याद रहते हैं, और वो फर्क बस थोड़ा छोटा सा है। फर्क बस उनकी खुशबू का है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं मेरी तरह जो परफ्यूम को सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन मानते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। यस, दोहा का मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम एग्जीबिशन दैट इज तीब अल हजम, इट इज कमिंग बैक। और ये 25 जून से स्टार्ट होने वाला है और 4 जुलाई तक रहने वाला है। यहां आपको मिलेंगे ट्रेडिशनल अरबिक ऊद, बखूल, लग्जरी फ्रेग्रेंस और कई प्रीमियम परफ्यूम एक ही छत के नीचे। मतलब मैं पिछली बार गई थी एंड इट वाज नॉट इनफ, मतलब एक बार नहीं दो बार गई थी एंड लिटरली वहां पर मैंने देखा है कि लोग ट्रॉली भर भर के परफ्यूम्स लेते हैं। कुछ तो बात होगी उसमें, इसीलिए राइट। सो इफ यू आर रियली अ परफ्यूम लवर, यू शुड नॉट मिस तीब अल हजम इन अल हजम मॉल। वेल, ओपनिंग डे पर जो है वो शाम के 6:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, रात के 11 बजे तक रहेगा। उसके अलावा वीकडेज में 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, फ्राइडेज को 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

सलाम नमस्ते, क्या हाल चाल कतर वालों। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियों का आगाज हो चुका है। अगर आप समर वाइब लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने पहले ही बुकिंग करवा ली होगी कहीं भी जाने की। वही वेकेशन आ गई है, चाहे तो आपका होम टाउन जाने का टाइम हो या फिर टाइम हो कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, ये सारी आइटिनरी बना के आपने रेडी तो कर ली है। लेकिन अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए मैं हूं ना, जी हाँ, मिर्च ईशा है, जो आपको बताएगी इस हफ्ते के सारे इवेंट्स, एग्जीबिशन शोज, सब कुछ यहीं पे। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, यानी कि मिर्चीशा के साथ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। एंड आप एंजॉय करिए महमूद, राघव और रुआ की आवाज में मशक्का मशक्का।

0: Mirchi. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गम पा। हमारे ये रियलिटी शो है। मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती हूं।
2: ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए। ऊ

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए, तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

गर्मियों की सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि इस मौसम में आमों की बहार होती है। बात करें मैंगो की, तो अगर आप भी मेरी तरह मैंगो पगलू हैं, जिसको सुबह भी मैंगो चाहिए, दोपहर में भी, लंच में भी खाने के साथ मैंगो चाहिए और रात में भी मैंगो चाहिए, अगर आप ऐसे ही पगलू हैं मेरी तरह, तो आपके लिए एक ऐसी जगह लेके आई हूँ जिसका नाम है हम्बा एग्जीबिशन। जी हाँ, एक ऐसी एग्जीबिशन जहाँ पे बहुत सारे मैंगो, हर तरीके के मैंगो आपको देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल में हम मिर्ची टीम ने विजिट जब किया हम्बा फेस्टिवल को, तो वहाँ हमने रियलाइज किया कि कितने सारे मैंगो हैं इस दुनिया में, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टेस्ट के, और उसके अलावा आपको मिलेगा खाने का भरमार। जी हाँ, मैंगो से रिलेटेड हर आइटम मिलेगी, चाहे वो मैंगो कलाकंद हो, मैंगो लस्सी हो, या मैंगो की पानी पूरी हो, सेव पूरी हो, डोसा हो, बर्गर हो, माय गॉड, इवन मैंगो चिकन भी मिलेगा आपको। तो आपको करना क्या है, इस वीकेंड, यानी कि बस ये आखिरी समय रह चुका है, इस वीकेंड आप जाइए, एंजॉय करिए फैमिली के साथ मैंगो फेस्टिवल को, और सुनते रहिए मुझे यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

क्या आप जानते हैं कि एक परफ्यूम से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं? हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ कि उसी परफ्यूम की जो आपने आज से 10 साल पहले लगाया होगा, लेकिन अगर आपने उसको लगाना छोड़ दिया है और अब दोबारा से लगाओगे ना, तो आपको वो 10 साल पहले वाली सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है परफ्यूम के साथ, लेकिन आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और आपके लिए एक बढ़िया न्यूज़ भी लाई हूँ परफ्यूम से ही रिलेटेड, कि भाई तीब अल हज़म होने वाला है जल्द। जी हाँ, आपके दोहा कतर में होने वाला है परफ्यूम एग्जीबिशन, जहाँ पे हर तरीके का परफ्यूम आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द 13th एडिशन जो होने जा रहा है अल हज़म में, एंड 25th जून से ये शुरू हो जाएगा, 4th जुलाई तक रहेगा। एंड इसके टाइमिंग्स ऐसे हैं कि 6:30 PM टू 11 PM तक रहेगा, एंड सैटरडे टू थर्सडे इट विल बी अराउंड 10 AM टू 11 PM, एंड फ्राइडेज 2 PM टू 11 PM। तो भाई ये मिस करने वाला मौका नहीं है, क्योंकि परफ्यूम्स की जो वैरायटी आपको मिलेगी ना देखने को, ओहो मजा ही आ जाएगा। और एंटर करते ही जो खुशबूएं आती है परफ्यूम की, समझ नहीं आता कौन सा ले और कौन सा छोड़े। तो बस ऐसा ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जल्दी से रेडी हो जाइए और इस वीकेंड जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं परफ्यूम वाला वीकेंड। और सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

हम औरतें ना बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं। अगर पति से लड़ लेती हैं ना तो बस एक शॉपिंग करके अपना मन बहला लेती हैं। जी हाँ, ये न्यूज उन्हीं के लिए है जिनकी अभी रिसेंटली अपने पति से लड़ाई हुई है और वो चाह रही है कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करना अपनी लाइफ में। तो आपके लिए दोहा समर ट्रेड फेयर लेके आई हूँ जो हो रहा है आपके DECC में, एंड ये 10 AM से लेके 10 PM तक है। फ्राइडेज 3 PM टू 10 PM तक है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ July 4 तक ही है, यानी कि 4th of July को ये लास्ट डेट है। उससे पहले पहले अगर पति से लड़ाई हो गई है या हो चुकी है या होने वाली है तो आप अपना ठिकाना याद रखिए कि कहाँ जाना है और क्या खर्चा करना है। एंड इसके प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है दैट इज टोटली यूनिक, क्योंकि एक छत के नीचे आपको ब्रांडेड सामान मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिल जाएंगे, डील्स मिल जाएंगे, उसके अलावा होम एसेंशियल्स, गिफ्ट्स, परफ्यूम्स, क्या चीजें हैं जो आप बोलोगे वो सब मिल जाएगा आपको अंडर वन रूफ। तो बस करना क्या है, इस वीकेंड जा सकते हैं। एंड हाँ, एक मौका आपके पति को भी दे दीजिए कि पैसे कटेंगे अगर आप लड़े मुझसे। बाकी स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 FM।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची ये थॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

अगर आपका बच्चा भी एक फुटबॉल पगलू है तो आपके लिए एक बेहतरीन सा इवेंट लाई हूँ। गेट रेडी विद द स्पिरिट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। जी हाँ, अगर आपके बच्चे में भी वही स्पिरिट है फीफा वर्ल्ड कप की और दिमाग में बस फुटबॉल चलता है, तो 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम लेके आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका, आपके बच्चे के लिए एक सुनहरा मौका, जहाँ पे दो फ्री फैमिली फ्रेंडली वर्कशॉप्स होने जा रही हैं, जहाँ पे बच्चा सीखेगा हाउ टू पेंट अ ट्रॉफी, अ फुटबॉल और अ सिनेरियो ऑफ विनिंग। जी हाँ, ये सब चीज़ें बच्चा पेंट करना सीखेगा एंड ऑल्सो अपनी जर्सी को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, किस तरीके से उसको पेंट किया जाए, वो सब यहाँ सीखेगा। ये सब वर्कशॉप पे सिखाया जाएगा। एक ऐसा इंटरैक्टिव सेशन है जिससे बच्चों की इमेजिनेशन और ब्रॉड होगी और यू नो फ्लरिश करेगी। तो बस आपको करना क्या है, आपको आज यानी कि 26 जून से ये शुरू है और कल का दिन भी है, दैट इज 27 जून को भी है, ये 4 to 6 PM तक है। 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम है, भूलिएगा मत, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक एक्साइटमेंट को, जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट जो इस समय हो रहा है उसको। एंड बस ऐसी ही मजेदार बातों के साथ आपको मजेदार इवेंट सुनाती रहूंगी, गाने सुनाती रहूंगी, तो बस मेरे साथ बने रहिए ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Milchi, burka.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगता
3: है? नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: देखिए, रंगों से खेलना एक बहुत मजेदार चीज होती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा इवेंट जहां मैं आपको इमर्सिव वे में कलर वर्स एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, तो अगर आप भी इस कलर वर्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो भाई दिन दूर नहीं। जी हाँ, 15 जुलाई से शुरू होने वाला है कतारा कल्चरल विलेज में एक ऐसा खूबसूरत सा एक्सपीरियंस जिसको आप कभी भी भुला नहीं पाएंगे, एंड इट इज अप टू सितंबर 15 तक रहेगा। इस इवेंट में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो टोटली नई होंगी आपके लिए, आपने कभी नहीं देखी होंगी, जिसमें हम बात करें वर्ल्ड ऑफ लाइट की, कलर की या डिस्कवरी की। ये सब एडवेंचरस चीजें आप वहीं देखोगे, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। ये इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है ना, देखो कलर की जब बात होती है ना, तो आई लव कलर्स। जब आज भी मैंने बहुत कलरफुल कपड़े पहने हैं, तो भाई उसी से पता लगता है कि हाउ कलरफुल आई एम। तो मैं तो ये इवेंट कभी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल इवेंट व्हिच आई थिंक एवरीवन शुड गो। अपने बच्चों को भी साथ लेके जाइए, इंजॉय हो जाएगा। एक ऐसा कलरफुल इवेंट जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस। भाई बस एंजॉय करिए मेरे साथ, ऐसे ही खूबसूरत से इवेंट आपको बताती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी 89.6 मिर्ची 1.7
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: फुल ऑन मस्ती, मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रखता है, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। एक आर्टिस्ट को ही पता होता है किस तरीके से, नए तरीके से हम अपने अपने आर्ट को बहुत खूबसूरती से बयां कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। वैसे ही अगर आप एक मास्टरपीस देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं रौदत अल हमामा पार्क, जहाँ पे गार्डन ऑफ लेटर्स देखने को मिलेंगे, विच इज डन बाय पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ये अशकल ने, एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड खरामा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 540 स्क्वायर मीटर की दीवार पे बहुत खूबसूरत तरीके से अरेबिक कैलीग्राफी को लिखा गया है। इसमें दिखता है किस तरीके से लेटर्स को कलरफुल फॉर्म में लिखा गया है, एंड नेचर के साथ वो खूबसूरत से लेटर्स कुछ तो बयां कर रहे हैं। एंड एन आर्टिस्ट कैन ओनली अंडरस्टैंड द अदर आर्टिस्ट। तो भाई आर्टिस्ट लोग, अगर आपको पसंद है ऐसी चीजें तो आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मुरल आर्ट आज ही एट रौदत अल हमामा पार्क। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दोस्ती का ही कुछ सुने मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
3: खूब मिलेगा, मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: अच्छा तो हम चलते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि फिर कब मिलोगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड। जी हाँ, फ्राइडे एंड सैटरडे मिलूंगी आपको इसी जगह इसी समय। और करना क्या है आपको, हमको फॉलो भी करना है इंस्टाग्राम हैंडल्स पे। हमारे मिर्ची वन कतर को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अपडेशन मिलती रहेगी हमारे इवेंट्स से रिलेटेड। कुछ भी हो रहा है कतर में, सब कुछ आपको पता लगेगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। उसके अलावा आप मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि मिर्ची ईशा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एंटरटेनमेंट का डोज लेने के लिए बस आप सुनते रहिए हमें, यानी कि मिर्ची वान कदर को। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: सचकुम, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स है ना, तो इतना समझ जाओ कि तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है।
1: मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aarti Anshu with you. यार कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ज्यादा हम पर भरोसा करते हैं। जब हम खुद अपनी अबिलिटीज को डाउट करने लगते हैं, जब हमें लगता है कि शायद हम जो है ना नहीं कर पाएंगे, तब कोई वो एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो हमारे सामने हमारी ही वकालत करता है, हमारे सामने हमें ही गलत साबित करने की भरपूर कोशिश करता है, ताकि सही मायने में हम अपनी जिंदगी में सही साबित हो सके। अब वो जो शख्स है ना, ये कोई भी हो सकता है, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कोई गुरु। यार अगर ऐसा कोई शख्स है ना, तो सच कहूं जिंदगी पूरी है यार। किसी भीड़ चाहिए, कोई एक हो जो तुम पे बेइंतहा भरोसा करे, तुमसे प्यार करे, सच मानो काफी है। एक छोटी सी शायरी है मेरे पापा की लिखी हुई, जो सुनाना चाहूंगी। मैं गिरने से डरा था, वो हौसला बनकर खड़ा रहा। जब मुझे खुद पर यकीन आता, वो मुझ पर यकीन करता रहा। तो बस अगर लगे ना कि कुछ तो सही नहीं है, तो सही शख्स को ढूंढने में कहीं कोई कमी ना छोड़ना, और जब मिल जाए तो हमेशा उसे अपने करीब रखना। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं। राकेश तेरे को पहले नहीं बताना।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता, आ रहा है तेरा दिमाग।

0: यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बदनामी कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हो, मेरा केस नहीं हो। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है ना, मैं राकेश हूँ, तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे?
2: बैक आ गया यार, ये केक तो खा ले।
1: हेलो,
3: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
2: मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
2: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
3: बोलो कुकड़ू कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। देखो यार, फुटबॉल देखने का मजा तब और बढ़ जाता है जब मैच के साथ एटमॉस्फेयर भी वर्ल्ड कप वाला हो, है ना। एंड अगर आपको लगता है कि इस वक्त आपके अंदर फीफा फीवर कूट कूट के भरा हुआ है, तो इतना समझ जाएं लुसेल का फैन जोन सिर्फ लाइव मैच स्क्रीनिंग तक लिमिटेड नहीं है। बल जहां पे एक तरफ जायंट स्क्रीन पर बिग मैच का एक्शन है, वहीं दूसरी तरफ ढेर सारे लाइव एंटरटेनिंग गेम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, फूड स्टॉल्स हैं, फन फिल्ड इवेंट्स हैं, जो आप किसी भी हाल में मिस ना नहीं करना चाहेंगे। वह इतना ही कहना चाहूंगी, साल 2022 की यादों को एक बार फिर से अगर मिलकर कहीं जीना है तो सीधा कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है लुसेल फैन जोन। और पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की सबसे खास बात यह है कि आप कभी भी इसे अकेले बैठ के एंजॉय नहीं कर सकते जब तक चार पांच लोग ना हो या चार पांच ग्रुप्स ना हो, या जो आपकी टीम की अपोजिट टीम को सपोर्ट करें एंड कहीं ना कहीं आपको टीज करें। तभी तो असल कंपेटिटिव स्पिरिट जो है ना मैदान पे नहीं इस तरफ आता है, हमारे बीच क्या कहती पब्लिक। तो फटाफट से इस वक्त लुसेल फैन जोन जाने की तैयारी मैंने तो कर रखी है, आपका क्या प्लान है ये जरूर बताना। अगर आ रहे हो तो खाने पीने का थोड़ा सामान ज्यादा लेके आना, बाकी तो वहां से खरीद लेंगे आप, हम खाएंगे। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका

0: फिर क्यों ना इस वक्त कॉफी के कप के पहले जरा पानी की ग्लास को जिंदगी में शामिल कर लिया जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. यार हमें से कई सारे लोग ना जब भी थकान लगती है इंस्टेंटली ये सोचने लगते हैं कि शायद आज नींद नहीं हुई है। हो सकता है ये सच हो लेकिन हो सकता है ये गलत भी हो क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कई बार थकान की वजह सिर्फ लैक ऑफ स्लीप नहीं होता। भाई साहब हो सकता है आप जो है फुल्ली डिहाइड्रेटेड हो, तो अगर आपको लगे कि आपको बिना वजह हेडेक हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा या एनर्जी लो लग रही, अरे नाना तुम्हारी बीवी या बॉस ने कुछ गलत नहीं कहा है हो सकता है बॉडी जो है वो सिंपली पानी मांग रही हो। तो जब जब थकान हो वो चाय या कॉफी के मग के पीछे भागने के बजाय ना फटाफट से पानी के ग्लास को जिंदगी में शामिल करना एंड प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए पानी के साथ साथ इन दिनों इतनी गर्मी में भाई साहब छाछ भी जरूरी है, कोकोनट वाटर भी जरूरी है, कुल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट्स।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100/100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: एक बात बताना, आज सुबह उठते ही तुमने सबसे पहले अपने सेल फोन पे कौन सा एप्लीकेशन खोला?
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे चांसेस हैं शायद व्हाट्सएप। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वैसे आप अकेले नहीं हैं, दुनिया भर के लगभग 3 बिलियन से ज्यादा लोग हर सुबह बस वही करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस वक्त व्हाट्सएप की कमान जो है एक इंडियन के हाथ में आ चुकी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मेटा ने भारत के कुणाल शाह को व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड अपॉइंट कर ही लिया है। और इनकी कहानी जो है ये काफी दिलचस्प है। कुणाल शाह, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया। अरे ना ही कोई फैंसी कॉलेज डिग्री, ना ही कोई पुश्तैनी जायदाद, उसके बाद इस बंदे ने अपने काम से, अपने हुनर से कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इसका नाम जो है हमेशा के लिए अंकित हो ही चुका है। पहले फ्री चार्ज बनाया, फिर क्रेड, एंड आज के डेट में व्हाट्सएप का ग्लोबल हिट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आखिरकार जुकरबर्ग ने कुणाल शाह को ही क्यों चुना? देखिए, व्हाट्सएप जो है ना, अब सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप के तौर पे नहीं रह गया। मेटा का विजन है कि व्हाट्सएप को कल को पेमेंट्स, एआई असिस्टेंट्स और बिजनेस इकोसिस्टम का पावर हाउस बनाना है। और अगर दुनिया में कोई मार्केट इन तीनों चीजों को सबसे अच्छी तरह से समझता है तो वो है इंडिया। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर पिछले कई सालों से एग्जैक्टली इसी स्पेस में प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रहा है, पेमेंट्स को समझ रहा है, टेक्नोलॉजी को स्केल कर रहा है, तो वो है कुणाल शाह। एंड बस इसी के चलते आज जो है कुणाल शाह के नाम के आगे अगर कोई नाम जुड़ चुका है तो वो है मेटा। भाई, ग्लोबल बनने के लिए दुनिया के पीछे भागना नहीं पड़ता, इतना अच्छा काम करो कि दुनिया खुद आप तक पहुंचे। कुणाल शाह की कहानी यही बयां करती। स्टेडियम टू मर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: यार एक बात बताना कि जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद रहती है?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. या नेशनल सी बात है, किसी भी जगह को अगर हम देखने जाएं तो भाई वहाँ के आइकॉनिक लैंडमार्क्स, वर्ल्ड क्लास इवेंट्स, ये सब तो याद रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी जगह में हमें खासकर वार्मथ या हॉस्पिटैलिटी महसूस हो तो वो जगह और भी ज़्यादा याद रह जाती है। एंड शायद इसीलिए कतर जो है दुनिया में काफ़ी अलग है और इसी एक्सेलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार फिर से आ चुका है कतर टूरिज्म अवार्ड्स 2026। देखिए इस साल और भी ज्यादा कैटेगरीज ऐड की गई हैं ताकि टूरिज्म इकोसिस्टम के हर हीरो को रिकॉग्निशन मिल सके, चाहे वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अट्रैक्शंस, इवेंट्स, डिजिटल क्रिएटर्स या सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस। वेल, कतर टूरिज्म ने कैटेगरीज को एक्सपैंड किया है और अगर इसकी लिस्ट को आपको देखना है तो बिल्कुल आप qatartourism.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके वीडियोज के चलते लोगों ने कतर को बेटर एक्सप्लोर किया है तो एक बात खास कर ध्यान रखिएगा, टूरिज्म इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर ये कैटेगरी भी इस साल इंट्रोड्यूस की गई है। बढ़िया है जी, आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 16th ऑफ सितंबर तक आपके पास वक्त है कि आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें qatartourism.com पे जाकर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ भाई अच्छी अच्छी एंट्रीज जो है वो शामिल करके आओ। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी एंट्रीज का टेस्ट कराना है कि वो वाकई इस काबिल है या नहीं कि उसे पुरस्कार मिल सके, तो मुझे बुलाओ, रेस्टोरेंट का खाना भी चखेंगे, मुफ्त में आपके यू नो सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे एंड साथ ही आपके वीडियोज में अपनी झलक भी पेश कर ही देंगे। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: हेलो
1: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
0: बोल कौन रहा है?
1: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
0: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
1: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स से मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
0: तूने जेब काटी, पर्स काटी ऊपर से, फोन करके
1: साले तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
0: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड्स होंगे भाई।
1: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
0: जरा वापस दे दो यार।
1: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मेहनत पे पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस से मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
0: कर दे, मैं तो कर दूंगा।
1: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
0: क्या करूं बताओ?
1: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
0: सॉरी
1: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
3: लव इज माय बिगेस्ट फियर, बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
2: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
2: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
5: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: जज्बा, शायद इसी का नाम तो जिंदगी है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. यार कभी कभी ना जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लगता। रास्ते नजर आते हैं लेकिन मंजिल दिखाई नहीं देती। दिल दुआ करता है लेकिन जवाब मिलने में वक्त लगता है। लेकिन शायद इसी का नाम तो जिंदगी है ना। आज अगर वक्त मुश्किल है तो याद रखिए, वक्त की सबसे खूबसूरत बात बस यही है कि वो कभी एक जैसा नहीं रहता। ना खुशियां हमेशा रहती हैं ना परेशानियां। जब अंधेरा गहरा हो तो हिम्मत मत हारना, जब रास्ते बंद लगने लगे तो भरोसा मत छोड़ना, और जब सब कुछ आपके हिसाब से ना हो रहा हो ना, तब उस रब पर यकीन रखना जो हमेशा आपके लिए आपसे बेहतर सोचता है। हो सकता है कि आज आपका इम्तिहान चल रहा हो, लेकिन कहते हैं ना, हर इम्तिहान के बाद एक नया सफा खुलता है। और जब वक्त बदलता है ना, तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, इंसान पहले से ज्यादा मजबूत होता है। और इसी बात पे कुछ तो पंक्तियां हैं जो मेरे पापा ने लिखी, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हौसलों को टूटने मत देना, रास्तों को छूटने मत देना, रब पर इतना भरोसा रखना कि अंधेरों को रोटने मत देना। वक्त जरूर बदलेगा एक दिन मुस्कुराकर, बस अपनी हिम्मत को कभी खुद से दूर होने मत देना। तो चलिए, अगर बात अच्छी लगी तो मुझे एक थैंक यू मैसेज हो जाए, क्या कहती पब्लिक? 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार सच कह रही हूँ, गर्मी के दिनों में ना ये दोनों ही चीजें काफी मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु
0: पहली बाहर निकलना और दूसरी पार्किंग ढूंढना। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त लगता है कि ओल्ड दोहा पोर्ट ने दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे लिए निकाल ही दिया है। वेल, इस समर ओल्ड दोहा पोर्ट लेकर आए हैं एंटरटेनिंग एक्टिविटीज की पूरी सीरीज, जो काफी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस देने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार है। एंड ये चलेंगे 15th ऑफ अक्टूबर तक। तो अगर आपको लगता है इवनिंग में आउटिंग या फैमिली टाइम या दोस्तों के साथ चिल करने का आपको प्लान बनाना है, तो बिल्कुल ओल्ड दोहा पोर्ट आप 101% पहुंच ही सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी चाहिए तो मिर्ची की पलटन जो है पूरी तरह से आप तक पहुंचने के लिए तैयार। खाने पीने का इंतजाम जो है वो बस आप कर लें। लेकिन अगर पार्किंग की बात करें तो मीना डिस्ट्रिक्ट रोड एक्सेस अब डेली दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक व्हीकल्स के लिए ओपन रहेगा। मतलब अब पार्किंग का ये जो टेंशन है ये जिंदगी में जरा कम हुआ। एंड सबसे खास बात ये है, अगर मैं वॉले पार्किंग की बात करूं तो अब रेगुलर रेट्स की आधी प्राइस में आप पार्क कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज तो ऐसे हैं जहां पे अगर आप मिनिमम स्पेंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री वॉले पार्किंग आपको मिल ही जाएगी। बढ़िया जी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सारे के सारे न्यू एक्सपीरियंसेस ओल्ड दोहा पोर्ट में मिलेंगे। जाइए इस गर्मी के दिनों में, वो ठंडी का मजा जो है उठाई लीजिए, कलेजे की ठंड उसी की बात करें। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
1: Yes.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: कतर की जो गर्मी है ना, ये बिल्कुल उस रिलेटिव की ही तरह है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. भाई वही रिलेटिव जो दो दिन के लिए कहे लेकिन रहे 3 से 4 महीने तक। नहीं, पहले के दिनों में, पहले के जमाने में ऐसा जरूर हुआ करता था। अगर आज की डेट में हम घर से बाहर निकलते हैं तो कई दफा ऐसा फील होता है कि भाई आज तो वेदर जो है जरा सा ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कार तक पहुंचते हैं ना, लगता है कि किसी ने अवन जो है प्री हीट करके हमें अंदर डाल दिया हो। एंड अगर आज आप घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ चीजों को अपने साथ जरूर लेकर चलना है, आपका फोन, आपका वॉलेट, आपकी कीज एंड सबसे जरूरी भाई साहब पेशेंस, क्योंकि इस गर्मी ने कुल मिलाकर हम सबको ऐसा हिलाया है ना, इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आंकड़ा जो है बिल्कुल 50 तक पहुंच चुका है, टेम्परेचर यानी कि डिग्रीज की बात कर रही हूँ। एंड जरा देखिए ये क्या ही कहते हैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: Weather update.
0: Well, आपका नाम भी जानते हैं, आपके कारनामे को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपडेट तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, लेकिन सबसे खास बात जिसे आपको अपडेटेड रखनी है वो ये कि खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखना है। पानी पीजिए, जूस पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीजिए, जो भी करिए, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रखिए। बाकी आपके कलेजे के ठंडक के लिए मैं हूँ, टक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। दिस इज इंडियाज मोस्ट डिफिनेट

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpayee ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये गाना किसी छोटी फिल्म का हिस्सा ना होता तो शायद आज और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होते, और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं। जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है, और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते। कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था।

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोस बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का एंड ये है धमाल 4 से।

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची it's hot
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ. एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ. हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गमा पा.
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गमा पा. हमारा ये रियलिटी शो है. मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं.
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं. ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अगर धारे गमा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे.
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए. आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी.
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी. आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा. गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी. स्टार्ट वर्षा. वर्षा, वन सेकेंड, देखिए.

0: वही वाली ऊंचाई है जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: ओ, मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊंचाइए तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: my God, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन.
3: इट्स हॉट.
4: Only on Mirchi. It's hot.
5: Number 17.

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: ओ माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है ए आर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। You've heard this song in Ravan, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
13: नंबर 50।
14: ओह लुक एट

हार्डी संधू और प्रीतम दा का गाना फ्रॉम कॉकटेल वल्ला इस हफ्ते नंबर 15 पर पहुंच गया है। और एक बात तो माननी पड़ेगी, पंजाबी म्यूजिक सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं रहा, पंजाबी म्यूजिक खुद एक पैरेलल यूनिवर्स बन चुका है। और उस यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है गुरु रंधावा। अब गुरु के गानों के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है कि गुरु ने एल्गोरिथम को ही क्रैक कर लिया है, क्योंकि वो गाने रिलीज नहीं कर रहा, वो मोमेंट्स रिलीज कर रहा है। पहले गाने हिट होते थे, फिर लोग उन पे डांस करते थे, आज लोग डांस करते हैं और गाने खुद ब खुद हिट हो जाते हैं। और गुरु ने ये गेम सबसे पहले समझ लिया। आपको ये गाना कत्ल याद है?

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आमिर खान पीके वॉज एन आइकॉनिक फिल्म, कई सारे आइकॉनिक सीन्स थे। Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
4: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई, क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ। मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे, और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है। उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी, चूना और कत्ता होता था।
3: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, दिन के 100 पान कौन खाता है यार। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 13.

आई थिंक मैंने धुरंधर 2 कम से कम 4 बार देख ली है फ्रॉम द टाइम इट ड्रॉप्ड ऑन नेटफ्लिक्स एंड इतनी लंबी है दैट इट कुड हैव बीन अ वेब सीरीज मैन. बट यस, देखते वक्त एक थॉट जरूर आया यार, कितनी रेयर हो गई है ये बात जहां एक फिल्म आती है और फिल्म भी काम करती है और म्यूजिक भी काम करता है. एक और अच्छा एग्जांपल है अगला गाना नंबर 11 पर, तू ही दिसदा बाय अरिजीत एंड निकिता गांधी फ्रॉम भूत बंगला. लेकिन आजकल बॉलीवुड में फिल्म और म्यूजिक का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है. या तो फिल्म कमाल की होती है और गाने याद नहीं रहते, या फिर गाने दिल में जगह बना लेते हैं और फिल्म 2 हफ्तों में दिमाग और थिएटर दोनों से निकल जाती है. और ऑनेस्टली दूसरा वाला केस ज्यादा कॉमन है. बॉलीवुड को अभी भी ग्रेट म्यूजिक बनाना तो आता है, बस उसके लेवल की फिल्म्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है. अब मैं वो पुराने एग्जांपल्स झूम बराबर झूम, रॉय, अनजाना अनजानी, इनकी बात नहीं करूंगा. दैट इज प्रीटी ओल्ड. पिछले 10 सालों की बात करते हैं. सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे लिए था लव आजकल, इम्तियाज अली, प्रीतम, और एक साउंड ट्रैक जो आज भी जिंदा है.

शायद। देखो फिल्म के बारे में लोग क्या सोचते हैं उस पर एक पूरी डिबेट हो सकती है, गाने के बारे में बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर आई ऐ दिल मुश्किल, और टाइटल ट्रैक ने फिल्म से भी लंबी जिंदगी जी ली। सब

0: और फिर एक साउंड ट्रैक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अमित त्रिवेदी का फितूर, एक ऐसा एल्बम जहां म्यूजिक ने वो इंपैक्ट क्रिएट किया जो फिल्म कभी नहीं कर पाई। कुछ गाने हिट होते हैं, कुछ गाने फिल्म से बड़े हो जाते हैं, और फितूर का टाइटल ट्रैक उनमें से एक है। Here on my special request, this is Fitoor by Arijit Singh.
1: Special request song.

0: Sahil ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Mirchi Helpline. What is the question?
1: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
2: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट दिन को

0: क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।
1: हो सवाल

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 10.

कॉकटेल 2 से बंधु 2.0 इस हफ्ते नंबर 10 पर डेब्यू कर रहा है एंड मुझे इस गाने से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीतम दा ने तो खुद कहा था कि लोग ट्रोल भी करेंगे और कंपेयर भी करेंगे, और कंपेयर तो करेंगे ही, लेकिन बंधु 2.0 सुनते वक्त आई गॉट अ फीलिंग मैन, कॉकटेल 2 इज अ गुड एल्बम, लेकिन कॉकटेल 1 वाज अ डैम गुड एल्बम। कॉकटेल 1 एक पूरी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर गाना अलग आसमान के नीचे रहता था। एक तरफ था अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी,

पूरा गाना ऐसे लगता था जैसे दोस्तों ने जिंदगी को कंधों पर उठा रखा हो और दुनिया को कहा हो यार कल देखेंगे, एंड देन यू हैड सेकंड हैंड जवानी।

0: बिल्कुल बेपरवाह, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल उस उम्र की तरह जहाँ कॉन्सिक्वेंसेस नाम की चीज डिक्शनरी में होती ही नहीं थी। और फिर इन सबके बीच एक गाना, ना सबसे लाउड, ना सबसे कमर्शियल, ना सबसे वायरल, बस सबसे सच्चा। एक ऐसा गाना जो शोर खत्म होने के बाद भी साथ रहता था, जैसे समंदर के किनारे रात के 2 बजे बैठकर अचानक किसी की याद आ जाती है, जैसे एक पुरानी दोस्ती, जैसे एक अधूरी मोहब्बत, जैसे जिंदगी का वो पन्ना जिसे आप कभी बंद ही नहीं कर पाए। कॉकटेल 2 मुझे पसंद है, लेकिन कॉकटेल 1 मुझे याद है। और म्यूजिक में पसंद और याद के बीच जो फासला होता है ना, उसे ही टाइमलेसनेस कहते हैं। Here is my version of Timeless, मोहन कन्नन और सुनिधि चौहान की आवाज में। It's my pick of the week. ये है यारियां।
1: Pick of the week.

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची it's hot मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
1: मिर्ची मुर्गा। हेलो।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, एक केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन।
9: इट्स हॉट।
10: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
11: नंबर 8।

0: जाइए सजना इस हफ्ते भी टॉप 10 में है, इट्स अ नंबर 8 एंड मुझे लगता था कि बॉलीवुड के बारे में मुझे सब कुछ पता है, फिर धुरंधर आई और मुझे रियलाइज हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। सीरियसली दिसंबर में ऑडियंस ने पहली बार धुरंधर की दुनिया में छलांग लगाई। 7 महीने, 2 फिल्में, 3,200 करोड़ रुपए और आज धुरंधर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार गायब है। नो इंटरव्यूज, नो विक्ट्री लैप, नो एंडलेस मीडिया अपीयरेंसेस, नो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी हेडलाइंस। रणवीर सिंह इसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे याद ही नहीं कि बॉलीवुड में ऐसा लास्ट कब हुआ था भाई। हमने राकेश बेदी जी को सुन लिया, हमने दानिश पंडोर को सुन लिया, हमने माधवन को सुन लिया और अब हम फाइनली मेजर इकबाल को भी सुन लेंगे।
1: जब आप एक्टिंग करते हैं या जब आप काम पे जाते हो, एक ही इंसान पे वो फिल्म नहीं बनती है। इट्स अ कलेक्टिव अप्रोच दैट यू हैव टू टेक। तो आप देखते हो कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो वो आपको देख कितना रहा है, यू नो, वो कितना ओपन है। और रणवीर has been very very open suggestions के लिए, rehearsals में, काम करने के टाइम पे। और सारी जो टीम थी वो वैसी थी, जितने भी डिपार्टमेंट थे, अगर हेयर हो, मेकअप हो, कॉस्ट्यूम। जब आप एक्टिंग करते हैं या जब आप काम पे जाते हो, एक ही इंसान पे वो फिल्म नहीं बनती है। इट्स अ कलेक्टिव अप्रोच दैट यू हैव टू टेक। तो आप देखते हो कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो वो आपको देख कितना रहा है, यू नो, वो कितना ओपन है। और रणवीर has been very very open suggestions के लिए, rehearsals में, काम करने के टाइम पे। और सारी जो टीम थी वो

0: माइंड में कि वो जानते हैं कि ये आपका काम है, तो वो अलाउ करते हैं सभी को कि वो अपने ट्रिपल ए परफॉर्मेंस या ट्रिपल ए गेम टेबल पर ला।
1: अर्जुन रामपाल को सुनने के बाद एक बात समझ आ गई है, शायद धुरंधर की सक्सेस किसी एक सुपरस्टार की सक्सेस नहीं है, शायद ये एक रेयर फिल्म है जहां हर डिपार्टमेंट ने अपना ए गेम लाकर टेबल पर रख दिया, शायद इसलिए फिल्म इतनी बड़ी हिट बन गई। लेकिन फिर भी यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का हीरो अब भी खामोश है और जब तक वो बोलेगा नहीं मिस्ट्री जिंदा रहेगी। नंबर 7।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। सर आज सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें हैं आज कहां हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वार्मथ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: only on मिर्ची इट्स हॉट।
3: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
4: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
3: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
10: नंबर टू।

मशरूका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है, और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फैमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सर्वाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यलीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th वीक एट नंबर 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
2: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
3: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
5: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: दूसरों की मदद करनी है, अपने लाइक्स नहीं बढ़ाने हैं। मस्त मौला गौरव आपको यहाँ बताना चाहता है कि कतर पुलिस ने पब्लिक को रिमाइंड किया कि अगर कभी वो रोड एक्सीडेंट देखें तो उसकी फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे बिल्कुल अपलोड ना करें। एक्सीडेंट रिपोर्ट करनी भी है तो ऑफिशियल मेत्राश ऐप पर जाकर या अथॉरिटीज के चैनल को यूज कर वो एक्सीडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बकायदा कैप्टन अल शमारी साहब ने क्लियर किया है कि हमारे कतर में आप फोटोज और वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होना चाहिए। मेत्राश में व्हीकल नंबर प्लेट और एक्सीडेंट की अप टिल 4 फोटोज आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें पैसेंजर या फिर इन्वॉल्व लोगों की फोटोज नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट का कोई भी कॉन्टेंट अगर आप शेयर करते हो तो 10,000 कतरी रियाल तक का पेनाल्टी फाइन आप पर लग सकता है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि कम्युनिटी और पुलिस पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस के लिए काम करती है, तो हमारी हॉटलाइन जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप उस पर कॉल कर लो। लेकिन ये याद रखो कि एक्सीडेंट देखा, जल्दी से फोटो डाल के व्यूज और लाइक के चक्कर में अगर आओगे तो व्यूज और लाइक्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इसके चक्कर में आपको जेल का व्यू भी मिलेगा। हाँ जी, तो बस इतना ही कहना चाहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी कि एक्सीडेंट को कॉन्टेंट मत बनाओ, उसे एक रिपोर्ट की तरह बनाओ, मेत्राश पे अपलोड करो। लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल राइट्स और प्राइवेसी ऑफ पीपल, आप उसको रिस्पेक्ट करो। 89.6 मेरे जीवन पर, मैं हूं आरजे मस्त मौला गौरव, याद दिला दिया मिर्ची थॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Cabana.
0: Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगा?
4: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा
4: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
0: इट पटाक।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा, दोनों
1: मिलेगा। भारत का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
1: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: थे, तो अब आपको फिक्र नहीं करना है क्योंकि कतर में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कतर सेंट्रल बैंक ने। यस, उन्होंने कहा है कि अब आप एज अ कस्टमर एप्पल पे और हिमियन कार्ड टोकनाइजेशन के जरिए कॉम्पैटिबल एटीएम्स पर पैसे निकाल पाएंगे विदाउट योर फिजिकल डेबिट क्रेडिट कार्ड। यस, मतलब अगर वॉलेट घर पे रह गया, कार्ड घर पे रह गया, तो भी आप एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे। ये कतर के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की डायरेक्शन में एक सबसे बड़ा गेम चेंजर मूव है, मैं यही कहूंगा। लेकिन असली चैलेंज तो अभी भी फंसेगा दोस्त। मान लीजिए आप मोबाइल लेके पहुंच गए, आप वॉलेट लेना भूल गए, लेकिन आप तो उसमें से हैं जो मोबाइल के चार्जर को भी ऑन करना भूल जाते हैं और बैटरी 1% रहेगी, तब क्या है? तब वही है, दोस्तों को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बुलाना ही पड़ेगा, तभी पैसे मिल पाएंगे, वरना भरे मार्केट में गरीबी का रोना आपको रोना ही पड़ेगा। 89.6 वर्जी 1 पर इस जबरदस्त स्टेप के लिए जोरदार तालियां हो जाए कतर सेंट्रल बैंक के लिए। ये आने वाले टाइम का अब तक का सबसे बड़ा मूव साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 89.6 मिर्ची 1, अब तो पार्टी भी लेंगे दोस्तों से, कोई बहाना नहीं चलेगा। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

क्या आप उन लोगों में से हैं जो मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं, फिर घंटों बाद जाकर देखते हैं कि आपने चार्जर का स्विच ऑन नहीं किया था और मोबाइल डेड है? या फिर आप उन लोगों में से हैं जिसने वॉलेट्स के पैसे रखने की बजाय अपने पॉकेट में नहीं रख दिया और धुल के आया तो सोच रहे ले ये कहां से आ गया? बिल्कुल मिलाकर अगर आप भुलक्कड़ हैं तो आप मस्त मौला गौरव के भाई हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये आदत थी और इस चक्कर में कई बार आप पैसे ले जाना भूल जाते

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती कहीं कुछ सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: या आपका कोई दोस्त करामा में काम करता है तो पार्टी ले लो यार। मस्त मौला गौरव आपको बता दे कि कतर में करामा ने टॉप प्राइज जीता है इन गवर्नमेंट सर्विसेज रीडिजाइन चैलेंज 2026 में।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, करामा ने गवर्नमेंट सर्विस रीडिजाइन चैलेंज 2026 में फर्स्ट प्लेस हासिल की है, जो कि ये दिखाता है कि इनोवेशन और स्मार्ट थिंकिंग का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। और करामा ने इसी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सर्विसेज को और कतर में बेहतर बनाने के लिए जो नए आइडियाज सॉल्यूशंस दिए वो सबको इंप्रेस कर देता है। और कतर में जीत जाता है गवर्नमेंट सर्विसेज रीडिजाइन चैलेंज 2026। और जैसे ही ये बात सुनी मुझे एकदम अपने स्कूल डेज की याद आ गई, जब हम भी एकदम यू नो क्विज चैलेंज में रहते थे, पार्टिसिपेट कर लेते थे, ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, स्पीच में करते थे, और हमें लगता था कि यार बस कैसे भी अवार्ड जीत जाए। उस समय हालांकि ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन लगता था, लेकिन आज समझ में आता है कि कॉम्पिटिशन के साथ साथ आप जब मेहनत करते हैं तो आप अपनी एक्सट्रीम लिमिट्स को भी आगे पुश कर देते हैं, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हमेशा अच्छा ग्रोथ प्रोग्रेस लेकर आता है। बिल्कुल उसी तरह जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये रेस चली तो करामा के हाथ ये मेहनत करने के बाद लगी, और अल्टीमेटली मुझे तो यही लगता है भाई, कंपटीशन चाहे एक दूसरे से बेहतर करने का ही हो, लेकिन इससे अल्टीमेटली फायदा हम पब्लिक का ही होता है। लेकिन करामा को बहुत बहुत मुबारकबाद, और उनकी अचीवमेंट भी एक बात बताती है कि करामा जिस तरफ आगे बढ़ रहा है और वो जिस तेजी से अपने आप को पूरी की पूरी सर्विसेज को बदल रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ हर दिन के साथ कुछ नया इनोवेशन, स्मार्ट मीटर से लेकर स्मार्ट वाटर मीटर्स तक सब कुछ ये बता रहा है, दे आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, और उसी का ये रिजल्ट है ये अवार्ड। तो ऐसे में अपने करामा में काम करने वाले दोस्तों से एक पार्टी तो बनती है दोस्त, कुनाफा बकलावा तो कम से कम खिलवा दो, इतना तो खर्चा कर ही सकते हो। मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: फिलहाल याद पिया को नहीं पानी को करना है। जबरदस्त गर्मी का प्रकोप और हमारे कतर में ह्यूमिडिटी ने भी अपना पारा बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो हमें और आपको भी पानी पीते रहना है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: दिन का मैक्सिमम तापमान आज 42 डिग्री सेल्सियस पर था, वहीं दिन का मिनिमम अराउंड 30, लेकिन रियल फीलिंग 46 डिग्री सेल्सियस वाली है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि विंड स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर पर ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। 36% के आसपास ये ह्यूमिडिटी हमें और गर्म फील कराती है, पर कोई नहीं, हम पानी पीते रहेंगे, इस ह्यूमिडिटी को हराते रहेंगे और सूरज चाचू से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जून आ गया है, जुलाई में थोड़ी और चमकान कम कर दो, अगस्त आते तक कम कर दो, ताकि हम कह पाएं यार पहली बार सितंबर में मौसम ठीक ठाक लग रहा है। 89.6 मिर्ची वन पर बहुत ही आशावादी इंसान मस्त बोलो गौरव, मिर्ची इट्स हॉट हरारा कतीर।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: helpline?
1: Check. Hi, Anjali. Machi helpline. Ball.
0: You know, I love twinning. But mera BF matching kapde kabhi nahi pehenta. Wo har baar na bol deta hai. Kya karun?
1: Hey, to galat thodi bol raha hai. Ladke skirt mein thodi acche lagte hai, Anjali.
2: Mast joke mara re. Ya has re halkat has.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

अमा यार कतर में रहे और हबीबी माफी मालूम लूगा अरबी, ये तो गलत बात है। जब आप किसी भी देश में रहते हैं तो वहाँ के लोगों के वहाँ के कल्चर के करीब कैसे आ पाते हैं, लैंग्वेज की वजह से। और अगर इस लैंग्वेज के चंद शब्द आप सीख जाएं तो आप बहुत हद तक कामयाब रहते हैं दूसरों को ये कह पाने में कि हम अरब में रहते हैं, हमें थोड़े अरबी आती है, और जरूर आनी चाहिए मैं तो ये कहता हूँ। और फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा किस तरह से कतर में दुनिया के लोग आके अरबी बोल रहे थे। वेल, ऐसे में हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि हम अरबिक लैंग्वेज को जिस हद तक सीख पाए जरूर सीखने की कोशिश करें, और इसके करीब आने का एक मौका आपको और मिल गया है। दोहा हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ द अरबिक लैंग्वेज ने अपनी वेबसाइट पर ऑटोमेटेड टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस लॉन्च की है। यस, और इस सर्विस के अंतर्गत क्या होगा, आप अब बकायदा जो भी अरबिक वर्ड है उसकी प्रोनंसिएशन बिल्कुल ठीक तरीके से सीख पाएंगे, और ये आपको सीखने को भी मिलेगा और समझने को मिलेगा, और एकदम करेक्ट स्टाइल में उसे किस तरह से कहा जाता है ये आप ऑडियो के जरिए समझ भी पाएंगे। अब मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे वो कतर में किसी शब्द की डेफिनेशन हो, हिस्टोरिकल रेफरेंस हो, प्रोज हो, पोइट्री हो, या कुरान का कोई भी वर्स, ये सब कुछ आपके लिए समझना और अरबी को सीखना और आसान बनाएगा। अगर अभी तक आप नहीं गए हैं तो जरूर जाइए दोहा हिस्टोरिकल डिक्शनरी में, जहां पर अब आपके लिए टेक्स्ट टू स्पीच वाली सर्विस लॉन्च कर दी गई है। अभी भी इससे आपके और हमारे लिए फी आसान लुगा अरबी। यस, आप अगर अब अरबिक सीखेंगे तो एटलीस्ट डायलेक्ट तो एकदम सही यूज करेंगे, और ये जो सर्विस आई है इसके लिए दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों को, उस टीम को जिसने इसके पीछे मेहनत की है, क्योंकि अगर हम शोए कलाम अरबी भी मतलब थोड़ा बहुत अरबी बोल लेते हैं तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: एड्रेस दे अपना, कर दे, मैं कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करो बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप, कुकड़ो कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप, और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर, बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
4: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
4: Catch Officer Brown, tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown, streaming on Hindi Z5 from 12th June.
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: काम ऐसा करो कि दुनिया आंख बंद कर कर आप पर भरोसा करे। और बिल्कुल ऐसा ही काम किया था हमारे कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022। तभी तो आज यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में भी हमारे कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी को संभाल रही है। यस, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको सबने कतर की मदद ली है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वो वहां जाकर वर्ल्ड कप को एकदम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ पूरा करा पाए। और ये बताता है कि ये सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट नहीं है बल्कि ये हमारे कतर को मिला वो सम्मान है जो हमने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान पाया। और अब दुनिया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज पर भरोसा कर रही है इसी उम्मीद में कि हम जब मेहनत से कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करती है। कतर एक बार फिर से ग्लोबली अपना इंपैक्ट बना रहा है और जिस तेजी से पूरी दुनिया कतर के हर बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनका साथ दे रही है वो दिन दूर नहीं जब ऐसी वजह से हम ओलंपिक भी होस्ट करेंगे। यस, तैयार रहिए एंड प्राउड ऑफ कतरी सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी मेहनत से उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करा रही है और दुनिया का भरोसा जीत रही है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: सोचिए कोई शहर इतना खूबसूरत हो कि हर वक्त वहाँ एक अलग सी मस्ती हो, सिटी ऑफ जॉय नाम ही कह दिया जाए, और वहाँ हर इंसान की बोली में एक मिठास हो, लेकिन अचानक से वहाँ सब कुछ अगर बदल जाए तो यस। और कोलकाता में ऐसे ही कुछ बदल गया है जिसको रोकने के लिए आ रही ऑफिसर ब्राउन। कोलकाता जहाँ पर लोग हमेशा मदमस्त रहते हैं, सिटी ऑफ जॉय नाम ही है, एंड रसगुल्ला से लेकर वहाँ पर मिष्टी दोई का भी बड़ा बोलबाला है। लोग एक दूसरे के साथ हमेशा हंसते बोलते रहते हैं, काम में बिजी लेकिन उसके बाद भी मस्ती को ही वैल्यू देते हैं। उस कोलकाता में अचानक से उनकी होली जब खेली जाती है तो वहां पर माहौल गड़बड़ हो जाता है, और माहौल गड़बड़ हो जाता है फिर लोगों को लगता है आखिर ये कौन है इसके पीछे जो हमारे शहर को इस तरह से बदल रहा है। और ऐसे में आती है ऑफिसर ब्राउन, और जो लोग ये खून की होली खेल रहे हैं उनको अपनी गिरफ्त मिलेगी। एंड ये आप कहां देख सकते हैं? वन एंड ओनली प्लेस Z5। यस, अगर आपने अभी तक Z5 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि यहां पर ये ऑफिसर ब्राउन की सीरीज ब्राउन शानदार है, जहां पर करिश्मा कपूर खुद ये रोल प्ले कर रहे हैं। आई एम श्योर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को पर्दे पर देखना और वहां पर इस क्राइम थ्रिलर को देखकर इसे सॉल्व होते हुए देखना अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस होगा। सो वेटिंग फॉर व्हाट? गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ Z5, जहां पर मस्त मौला गौरव ने आपको याद दिलाया। एंड क्या बता, वीकेंड पे बिंज वॉच करके पूरे मस्ती से ये देखी लो 89.6 मिर्ची 1, मजा आएगा। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

जमाने को देखकर कभी कभी खुद का रंग भी बदलना चाहिए। और शायद एप्पल ने भी अब ये सोच लिया है कि उसे भी अब खुद के रंग को और ढंग को बदलना है, तभी तो अब वो अपना फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी कर रहे हैं। यस, कहा जा रहा है कि उनका ये अल्ट्रा आईफोन जो है ये एक फोल्डेबल आईफोन हो सकता है, जिसका डेब्यू इस साल सितंबर में होगा, जब आईफोन हर साल अपनी फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करता है। वेल, कहा यही जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ऑन शेड्यूल ये लॉन्च जो है वो होगा। हालांकि प्रोडक्शन अभी थोड़ा सा चैलेंज में आ सकता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक न्यू सप्लाई चेन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि शायद फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री मारने के पहले एप्पल बहुत सारा रिसर्च कर रहा है, थोड़ा सा ये आगे टल सकता है। पर कहा यही जा रहा है सब कुछ ठीक रहा तो आपको आईफोन अल्ट्रा बोले तो फोल्डेबल आईफोन जल्द मिलने वाला है। हम तो यही बात सोच के घबरा गए कि अभी तो जब सीधा साधा है तब एक किडनी बेचनी पड़ रही है, उसका इलाज कराना पड़ रहा है, अब जब फोल्डेबल आ गया दोनों स्क्रीन वाला, मुझे तो लग रहा है इसमें किडनी दोनों दोनों ना चली जाए। फिलहाल इतने कहेंगे सब कुछ ठीक रहा तो 2027 तक ये मार्केट में आपको दिखाई पड़ सकता है। और अगर ऐसा है तो हम ये मान लेंगे कि बड़े बड़े को कभी कभी लपेटना पड़ता है, उनसे झुकना पड़ता नहीं लपेटना पड़ता है। तो अब इन्होंने अपना लपेटू फोन लाने की तैयारी कर ली है। ऑल द बेस्ट 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट, दो दो किडनी की तैयारी करो।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: अगर इस छुट्टी पे कहीं वेकेशन नहीं जा रहे हो तो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। मस्त मौला गौरव आपके साथ है देवी और सज्जनों। और हमारे कतर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव समर मंथ के लिए लॉन्च किया है, समर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, समर 2026 स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स में हमारे और आपके बच्चों के लिए बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और एजुकेशनल एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। यस, और इसकी टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक की। बच्चे 5th ऑफ जुलाई से लेकर 3rd ऑफ अगस्त के बीच इस समर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का हिस्सा बनेंगे और यहां पर सीखेंगे ढेर सारी एजुकेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उनको आने वाले टाइम में भी बहुत काम आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स और स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, यानी कि इंक्लूसिविटी काफी हाई है। और इसी के साथ लर्निंग भी होगी, फन भी होगा, मस्ती भी होगी एंड नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका भी। और पेरेंट्स के लिए बोनस कि मतलब बच्चों से कुछ घंटों के लिए छुटकारा मिलेगा, 9 से 1 किसी एक्टिविटी क्लास में जाएंगे तो मम्मीज अपनी पार्टीज कंटिन्यू कर पाएंगी किट्टी विट्टी वाली, है जी। और इन सब के बीच इतना ही कहना चाहूंगा, आजकल बच्चे वैसे भी घर में रह के या तो मोबाइल करते हैं या फिर आपसे कंप्लेन करते हैं, मामा आई एम गेटिंग बोर्ड, मुझे मोबाइल दो ना। तो कम से कम बच्चे कहीं अच्छी जगह इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ अच्छा ही सीखेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जल्द अनाउंस होगी तो आपको नजर बनाए रखनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर। एंड ये जैसे ही खबर आप तक पहुंचेगी तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइएगा ताकि आपका बच्चा इस एक्टिविटी कैंप का हिस्सा बन पाए और अपने लिए समर कैंप में कुछ अच्छा सीख पाएगा। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है, मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hello, Mirchi Helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: ट्वेंटी टॉप टेन कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक होने वाला है, अ स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से पूरे 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अनूप जैन की आवाज में उनका गाना अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है, गाने का नाम है साड़ी सुन, हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लेयर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऑब्वियसली जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद दीप क्लेयर उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna ho, kissa, kahani, kuch bhi batana ho. @RJKanika on Instagram par aake quickly hit me up. गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। तो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेज को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

0: वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ते हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 8.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची
3: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
4: क्या नाम बताया आपने?
5: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
4: थोड़ा बहुत गा लेती
5: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
4: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
5: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
4: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
5: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा वन सेकेंड, देखिए ऊ

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए।
1: ओ
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: my God, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर, बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
3: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी।
3: Catch Officer Brown, Officer Brown, tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown, streaming on Hindi Z5 from 12th June.
6: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
7: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
9: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
10: हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
13: गाना इंडी टॉप 10
14: कनिका के साथ On Mirchi
15: number 666.

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खान रावटोर का म्यूजिक गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is the Ghana Indie Top 10. बदी का नाम है RJ Kanika. Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा handle is @RJKanika. कोई गाना suggest करना हो बिंदास आके बताओ। It's time for our favorite part of the show. It's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारा कैसेट क्लासिक जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज आपका दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है RJ Kanika. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके बताओ। इट्स टाइम फॉर आवर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारा कैसेट क्लासिक जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग

तेरा मेरा प्यार बाय कुमार सानू। ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था एंड आज भी ऑलमोस्ट 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो इट स्टिल गिव्स मी दैट रश ऑफ फर्स्ट लव, पहली मुलाकात। आई स्वेयर एवरी टाइम आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग मैं ना अपने आप में ब्लश कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि स्टॉप इट। एंड टिल डेट दिस सॉन्ग मेक्स मी फील लाइक दैट। This song gave us Nimrat Kaur, one of her earliest appearances, and that pink top that she's wearing in the video. मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था, ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे। What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है, एक मूवी थिएटर है, so first eye contact, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए, एंड इस सब को इनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, विच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस दिस वीक ऑन कैसेट क्लासिक। दिस इज तेरा मेरा प्यार ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Dude, I almost feel embarrassed the way this song makes me blush. क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है बट है ऐसा ही है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन एट आरजे करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ जो गाना आपको आज ये से गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s अ इंडी पॉप सॉन्ग मुझे और अश्काय को आकर बताओ ऑन एट आरजे कनिका एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक Now back to the countdown, अगले वाले गाने की तरफ Sanju Rathod is back and how this time with Bangles. पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके Bangles is playing right next for you on Gaana number 5. You are listening to Gaana Indie Top 10, बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 5.

0: Blana Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: यार. तूने सुना एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है.
5: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया. और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश.
0: मिर्ची इट्स हॉट. अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड. Cute little bangle for the newborn.
6: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: On Mirchi.

0: दिलजीत दोसांझ एंड सिया की आवाज, डेविड गेटा का प्रोडक्शन, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन तीन आर्टिस्ट का नाम एक सांस में लूंगी, बट दैट इज 2026 का म्यूजिक सीन फॉर अस।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Karenga ke saath, this is the Gaana Indie Top 10. Only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaye, mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Yahan par hum aane wale gaano ko discuss karte hain. Kaun naye collaborations ho rahe hain, kiska gaana hua countdown se out, ya kaun sa gaana ho sakta hai in. गाना नंबर 4 पे हमने दिलजीत एंड सिया का गाना सुना रांझा, विच इज सच एन आइकॉनिक कोलैबोरेशन। इंडियन इंडी पॉप में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैब्स देखे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट डिवाइन करण औजला का स्ट्रीट ड्रीम्स, देयर इज बादशाह दिलजीत दोसांझ, बट देयर इज वन कोलैब जिसके ऊपर मैं आज एक बड़ी वाली स्पॉटलाइट मारना चाहती हूँ। इट्स बाय दीज टू इनक्रेडिबल आर्टिस्ट कॉल्ड अकासा एंड आस्था गिल। गाने का नाम है नागिन एंड इट वाज सच अ रेजर इन 2019। नागिन में अकासा एंड आस्था दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लेकर आती हैं। कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर रहा है, बल्कि वो गाने में इतने मजे कर रही हैं दैट हमें भी सुन के मजे आते हैं। इंडिविजुअली आस्था गिल अप टू दैट पॉइंट वाज नोन फॉर दिस सॉन्ग। On the other hand, Akasa is such a versatile artist. वो high energy, intensity वाले गाने भी गा सकती हैं and बहुत प्यारे love songs like this one. दिल ना जाने And ये दोनों iconic artist आती हैं to create Nagin, which I absolutely love. Even 2019 से 2026 तक I cannot name a lot of female duo pop songs. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। Here's me putting it out in the universe. आस्था एंड अकासा, we need a new song from you. This is Nagin on our Gaana Spotlight only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.

0: पॉप कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। 2 साल पहले सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल, द टू लीडिंग पॉप स्टार्स का एक गाना आया था, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर इन अ सॉन्ग। गाने का नाम मुझे आके बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ once again with his song Dealer, 14 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके Dealer is this week on गाना नंबर 3। You're listening to गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
1: Number 3।

0: मलाइका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आमिर खान पीके वाज एन आइकॉनिक फिल्म, कई सारे आइकॉनिक सीन्स थे। Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
4: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई, क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ। मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे, और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है। उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी, चूना और कत्ता होता था।
3: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, दिन के 100 पान कौन खाता है यार। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
10: गाना इंडी टॉप 10
0: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
3: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाएं, कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है या किसी गाने के बारे में कुछ सवाल है, होते हैं यार अंटशंट आते हैं पर मजे आते हैं मुझे, @RJKanika पर आओ बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट बिफोर दैट लेट्स डू अ राउंड अप right from the top. Anuv Jain ka arz kiya hai was this week on Gaana number 10.
11: Kaayare jo the wo shayare bane.
3: Nayi Naveli entry Harsh Nussi ka Saadi Sun on Gaana number 9.
12: Akhiyan na akhiyan mila te sahi Saadi Sun apni zana te sahi.
3: Anish Sarkar Hruday ka Udi Udi on Gaana number 8.
13: Lari chunari aayu udi udi jaye re.
3: MC Square का Long Way From Home on Gaana number 7, then Aditya Rikhari Ravit और Kutle Khan का Ae Ajnabi on Gaana number 6. Sanju Rathod का Bangles on Gaana number
14: 5.
3: Diljit and Sia का Ranjha on Gaana number 4. Diljit yet again with Dealer on Gaana number
15: 3.
3: The top 2 songs of the week, Mitta Rohr and Swara Verma ki awaaz mein Shisha, composed by Mitta Rohr this week on Gaana number 2. Uske baad the numero uno song of the week, The Breakthrough Haryanvi track, गाने का नाम है Bairan by Banjare. 13 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 position ऊपर jump करके Bairan is yet again on Gaana number 1. Shisha and Bairan, दोनों गाने back to back, only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है Kanika. Enjoy.

0: ना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
2: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट। एक बार

0: खुशियों के रंग, होली वाले रंग, कलर करने वाले रंग और इंसान के बदलते रंग, कौन सा रंग देखेंगे आप?
1: मिर्ची कैफे
0: शो शुरू हो गया है. मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. अभी अभी आपने सुना गाना रंगरेज फ्रॉम द फिल्म तनु एट्स मनु. उफ, क्या गाना है ना ये. रंगरेज के बारे में अगर हम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देखें तो होता है कि रंगने वाला, रंग करने वाला, है ना. और सूफी का इसका डिस्क्रिप्शन अलग है कि कैसे हमने अपने आप को किसी के रंग में रंग लिया एंड ऑल दैट. आप नोटिस करना कि रंग पे ना बड़े सारे गाने बने हैं, और जितने रंग होते हैं ना दुनिया में उतने ही रंग के अलग अलग मीनिंग भी हो जाते हैं. तो जैसे अभी तो आपने ये रोमांटिक रंगरेज गाना सुना, नेक्स्ट गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन ओशन से. ये पीपली लाइव एक फिल्म आई थी, इफ यू रिमेम्बर, इसमें ये गाना लिया गया था. इट इज अ पुराना फोक वैसे, लेकिन इसमें जो रंगरेज का मीनिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. सो लेट्स गेट इनटू दिस नेक्स्ट ट्रैक. और आप जब इसको सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि जितनी ब्यूटी है ना रंगों की, उतनी ही ड्यूटी भी है हम सबकी कि हम अपने देश को साथ लेके चलें और हर इंसान को साथ लेके चलें और ज्यादा रंगरेजी ना झाड़ें. हाँ, अंग्रेजी एंड रंगरेजी बहुत. सुनो ये गाना, कहीं मत जाना. स्टे ट्यून्ड हियर ऑन मिर्ची कैफे. आप सुन रहे हैं मेरे यानी पारुल के साथ ऑन मिर्ची. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? है राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोले परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता? आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा,
0: मेरी मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: अर्ज
3: किया है
5: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, सीधा, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हम सबके अंदर कैसे ये मोनोलॉग चलता रहता है ना, चलते फिरते कोई ना कोई थॉट्स आते रहते हैं, कभी किसी के बारे में हम क्रिबिंग करते रहते हैं अपने आप से, कभी खुश होते रहते हैं अपने अंदर ही. सो दिस मोनोलॉग दैट हैपेंस इनसाइड ऑफ एवरीवन, एक्चुअली ये गाना उसी मोनोलॉग पर बेस्ड है.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पार्लर के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. आपने सुना गाना क्या करूं फ्रॉम द फिल्म वेक अप सिड, क्लिंटन सेरेजो की आवाज में. सो बेसिकली जावेद अख्तर ने इस फिल्म के लिए सिड जो कि होता है वेक अप सिड का रणबीर कपूर, उसके लिए ये इंटरनल मोनोलॉग लिखा था कि कैसे वो परेशान है कि क्या करूं टाइप. ओके तो जब डायरेक्टर अयान मुखर्जी एंड शंकर एहसान लॉय को ये पता चला कि ये मोनोलॉग है, उन्होंने इसी स्क्रिप्ट को दे टर्न इट इनटू अ सॉन्ग जो अभी अभी हमने यहाँ पे सुना. तो ये ऐसे रिफ्लेक्टिव कंफ्यूज ड्रिफ्टिंग थॉट्स दिखा रहे हैं इस गाने में सिड के. सोचो, मैं ये सोच रही थी कि अगर हमारे इंटरनल थॉट्स पे कोई मोनोलॉग बना के उस पे गाना बनाया जाए तो क्या होगा. नहीं, लेट्स नॉट गेट देयर. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग. जो अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो बयां कर रहा है मेरी उस ख्वाहिश को कि आपकी और मेरी बातें इसी तरह चलती रहें बस. लेकिन इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस सॉन्ग ये है कि ये गाया है डोमिनिक सेरेजो ने, और जो मैंने आपको पिछला गाना सुनाया था वो था क्लिंटन सेरेजो की आवाज में. सो क्लिंटन एंड डोमिनिक आर पति पत्नी, यस. तो अभी यहाँ पर ऐसे एकदम फैमिली मोमेंट बनाती हुई मैं पारुल मिर्ची कैफे पर, आप इंजॉय करो रॉक ऑन से ये ब्यूटिफुल गाना. Only on Mirchi. Stay tuned. Sorry. वो बयां कर रहा है मेरी उस ख्वाहिश को कि आपकी और मेरी बातें इसी तरह चलती रहें बस. लेकिन इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस सॉन्ग ये है कि ये गाया है डोमिनिक सेरेजो ने, और जो मैंने आपको पिछला गाना सुनाया था वो था क्लिंटन सेरेजो की आवाज में. सो क्लिंटन एंड डोमिनिक आर पति पत्नी, यस. तो अभी यहाँ पर ऐसे एकदम फैमिली मोमेंट बनाती हुई मैं पारुल मिर्ची कैफे पर, आप इंजॉय

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
4: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी है।
4: Catch Officer Brown, tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown, streaming on Hindi Z5 from 12th June.
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM Mirchi 1

0: यार इस गाने के बारे में आपको दो ऐसी बातें बताऊंगी जो आई एम श्योर काफी लोगों को नहीं पता होगी।
1: मिर्ची कैफे,
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और आपको पता है ये बैक देन जब काफी सुनने में आता था ना कि आमिर और सलमान की फाइट चल रही है, ये एक दूसरे को कुछ तो भी ताने और कमेंट्स मारते रहते हैं, सो अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि ये जो गाना है ना ये सलमान खान पे बेस किया गया है जानबूझकर, क्योंकि सलमान इज मस्क्यूलर एंड पॉपुलर एंड स्पेक्टेक्युलर एंड अ बैचलर, लेकिन उनको बहुत अच्छा डांस नहीं आता। टू दैट आमिर खान लेटर केम एंड क्लैरिफाइड कि नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस गाने में हमने सलमान का कुछ रेफरेंस रखा है। ऑल्सो जब आपने ये गाना सुना, क्या आप सोच सकते हो कि इसके कंपोजर AR रहमान हो सकते हैं? नहीं ना यार, बिकॉज यू नो AR रहमान के मोस्टली सोलफुल और एकदम ऐसे दिल से निकलते हुए अमेजिंग मेलोडीज के बीच अ वेरी वेरी डिफरेंट रूल ब्रेकिंग सॉन्ग वॉज पप्पू कैन डांस सारा, बेनी दयाल, नरेश अय्यर एंड सतीश की आवाज में अभी आपने सुना है ना। नहीं बताता ना आपको ये बातें। ऑल्सो आपको एक क्विक बात बताती हूँ, इस गाने में एक बीच में फ्रेज आता है वाना मी सी यू व्हेन यू डांस एट द हॉल गारा, वाना मी सी यू व्हेन यू डांस हे, इसका भी सब अपना अपना वर्जन बना के गाते हैं, आधे लोगों को समझ नहीं आता क्या लिरिक्स हो रहे हैं। सो That was all about Pappu Can Dance. और ये misheard lyrics से मुझे याद आया कि कुछ तो होते हैं वो लोग जो कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी बना के गा लेते हैं। कुछ ऐसे फिर गाने आते हैं जो सुखविंदर सिंह गाते हैं, उनके लिरिक्स ही ऐसे लिखे जाते हैं जो कि ऐसा लगेगा कि रियली ये क्या हमने सही सुना है। गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना अभी आप सुनेंगे नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड इब्न बतूता। सुनो इसको, आती हूँ वापस थोड़ी देर में। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, पहन के जूता।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मुझे लगता है जो काम ऑर्गेनिकली हो जाता है ना, वो चाहे कितना भी आप पैसे देके करवाओ या फोर्सफुली करवाओ, नहीं हो पाएगा।
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। अभी अभी आपने गाना सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की मधुर आवाजों में तुम मिले दिल खिले। यार कैसे, मतलब यार मैं सोचती हूँ इन दोनों ने एक साथ कितने गाने गाए होंगे ना, हजारों तो गाए होंगे, बट अगर वो वाइब नहीं मिल रही होती ना दोनों की एक दूसरे के साथ, तो फिर शायद ही नहीं हो पाता पॉसिबल ऑर्गेनिक वाइब। ऐसे ही बहुत सारे काम आई ऑफ लेट बीन ऑब्जर्विंग कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ रील्स के लिए या सिर्फ स्टोरीज के लिए या सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, ऑर्गेनिकली नहीं करते हैं, तो फिर वो ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, वो बस हो गया ठीक है। पर मैं एक बात की गारंटी जरूर दे सकती हूँ, चाहे कितनी भी जनरेशंस बदलती चली जाएं, लेकिन वो जो ऐसे दिल वाली चीजें होती है ना, रूह वाली, मोहब्बत वाली, जिसमें एक्चुअली मुंह से निकलता है कि और जीने को क्या चाहिए, वो वही होती है जो ऑर्गेनिकली होती है, प्रेजेंट होके की जाती है, सच में दिल से की जाती है। आई डोंट वांट टू गिव यू ज्ञान एंड ऑल दैट, लेकिन हाँ ये यार थोड़ा सा ना मिसिंग लगता है कहीं कहीं पे मुझे, कि सिर्फ टिक मार्क करने के लिए मत करो काम यार, दिल से करो या मत करो। हाँ वो अलग बात है कि बॉस के आगे तो बटर चाशनी सब लगा के काम करना ही पड़ता है। सुनो ये अगला गाना अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, बहुत प्यारा गाना, येट अगेन ऑन मिर्ची कैफे, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: निगम, अलका याग्निक, जतिन ललित, जावेद अख्तर, फिर भी दिल हिंदुस्तानी 1999। वाओ, कहां चली गई मैं एकदम से।
1: मिर्ची कैफे,
0: कम बैक। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। शाहरुख खान का ये क्यूट सा गाना विद जूही चावला, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज होती थी यार उस वक्त, आपको याद है। वैसे अगर देखा जाए तो 1999 वाज अ हैट्रिक ईयर ऑफ सलमान खान। सो हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर वन, हम दिल दे चुके सनम, ऐसी वाली फिल्म आ रही थी उस वक्त। कितना वक्त बदल जाता है ना देखते देखते, एवरीथिंग जस्ट चेंजेस। इनफैक्ट आपको मैं कहती हूँ, याद करो 1999 में आप क्या कर रहे थे। कभी कभी पुराने वक्त को सोच के ऐसा ही लगता कि वो भी एक लाइफ टाइम था। नहीं, एनीवे, जब तक आप अपनी यादों में खोए हुए हैं, टॉकिंग अबाउट सलमान खान, अगला गाना मैं आपके लिए चला रही हूँ श्रेया घोषाल, बेनी दयाल, ए आर रहमान, इन तीनों के सुपर ट्रायो का ये बहुत प्यारा गाना। दिस इज वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट्स ऑफ सलमान खान। सबसे क्यूट बात पता है इस पूरे गाने की क्या है? सो ये गाना ना बिल्कुल दोस्ती के जोन में रखा गया है, इसमें कोई ऐसे प्यार मोहब्बत वाले शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं। सुन के देखो पूरा गाना, यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग। लिसन टू तू मेरी दोस्त है, राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid vala burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
3: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। I love you, but मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, I love you, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा यार रिक्शा
3: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
4: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
5: अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स और डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: बाय गॉड सच बताना, आपके शोल्डर्स डांस कर रहे थे ना बैठे बैठे इस गाने को सुनते सुनते। यार यही तो कमाल की बात है ना, सच अ बम्पिंग थम्पिंग ट्रैक, नच बलिए फ्रॉम द फिल्म बंटी बबली, शंकर महादेवन का माइंड ब्लोइंग म्यूजिक। लेकिन जब लिरिसिस्ट हो गुलजार साहब तो वो इतने मजेदार गाने में भी क्या लिख रहे हैं सुनिए। हर कदम ये ख्वाबों का बिछौना है, खेल खेल ये किस्मत तो खिलौना है, दाव लगा दाव पर किस्मत खड़ी पांव पर चलवे। जब हम नाच रहे होते हैं ऐसे गानों पे तो हम सोच रहे होते हैं कि ओह ये इतने इंटेंस लिरिक्स हैं।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और यही मैजिक है यार, कमाल है हमारे लिरिसिस्ट का। कभी कभी ना मैं ऐसे एकदम माइंड ब्लो हो जाती हूँ और मेरे को लगता है कि आपको बताऊं कि देखो क्या मैजिक चल रहा है यहाँ पर। ओके, सो एक डांसिंग ट्रैक से निकल के दूसरे डांसिंग ट्रैक में घुस रहे हैं हम अभी यहाँ पर। शंकर महादेवन का गाना अगेन, एंड ये जो फिल्म है ये मेरी फॉरएवर फेवरेट फिल्म है। इसके सारे कैरेक्टर्स की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। फिलहाल मैं एक बताती हूँ आपको मजेदार सी कूल सी बात अबाउट दिस सॉन्ग। सो ये गाना बड़े सारे लोगों ने मिलकर गाया है और इस गाने में पिक्चराइज्ड हैं तीनों दिल चाहता है के कैरेक्टर्स, आमिर, अक्षय खन्ना एंड सैफ अली खान। तो जब ये गाना बन रहा था, शान वाज अबाउट टू सिंग अक्षय खन्ना वाला पोर्शन, लेकिन सडनली फरहान अख्तर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको लगा कि नहीं यार ये सैफ अली खान से ना शान की वाइब और एनर्जी ज्यादा मैच हो रही है, सो उनको उनका पोर्शन गाने देते हैं। और उसके बाद जब गाना रिलीज हो गया तो फरहान ने एक्चुअली लोगों को उल्लू बनाया ये कहकर कि वो पार्ट ना सैफ ने खुद गाया है और लोगों ने यकीन भी कर लिया। सो आप सोच रहे हो ये लिरिसिस्ट और म्यूजिशियंस और इन सब का कितना कमाल का बैकिंग काम होता है ना किसी भी फिल्म या गाने के ऊपर, जिसको हम सुनकर बस मस्ती से नाचते रहते हैं। सो यस, गेटिंग इनटू दिस ट्रैक, कोई कहे कहता रहे, ओनली ऑन मिर्ची कैफे विद मी पारुल। स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। और लोगों ने यकीन भी कर लिया। सो आप सोच रहे हो ये लिरिसिस्ट और म्यूजिशियंस और इन सब का कितना कमाल का बैकिंग काम होता है ना किसी भी फिल्म या गाने के ऊपर, जिसको हम सुनकर बस मस्ती से नाचते रहते हैं। सो यस, गेटिंग इनटू दिस ट्रैक, कोई कहे कहता रहे, ओनली ऑन मिर्ची कैफे विद मी पारुल। स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ ब्रेक के बाद।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हो गई पार्टी। अच्छा अब ये सुनो, व्हाई डिडंट द स्केलेटन गो टू द पार्टी? एक स्केलेटन पार्टी में क्यों नहीं गया? बिकॉज ही हैड नो बॉडी टू गो विद। स्केलेटन था ना, ही हैड नो बॉडी टू गो विद।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी बारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और इससे पहले कि आप मुझे मारने के लिए ढूंढो, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अभी आपने गाना सुना, अर्जुन कानूंगो एंड बादशाह का गाना बाकी बातें पीने बाद, यार इसकी वाइब बहुत ही निराली थी उस वक्त ना। बहुत सारे ऐसे फिल्मी वाले ही गाने आ रहे थे और ये जब आया था तो अचानक से एक इंडिपेंडेंट कमाल का गाना आ गया था। एंड बादशाह ने इसमें अपेरेंटली मयूर पुरी के साथ लिरिक्स भी खुद लिखे हैं एंड कॉम्पोजिशन भी उन्हीं की है। अगला गाना आपके लिए फिलहाल एक और पार्टी मूड का लेकर आई हूँ। और ये गाना जो था ना, इसमें अपेरेंटली रितेश देशमुख ना शेप में आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। उनको ऐसे ग्रूव करना था इस गाने पे, इसलिए तो इस गाने में ना ऐसे एक पिक्यूलियर सा बीट है। दं, तटक, दं, दं, दं। अभी आप सुनोगे, मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ, सुनाती हूँ आपको ये गाना। कहीं मत जाना, स्टे ट्यून्ड हियर ऑन मिर्ची कैफे। आप सुन रहे हैं मेरे यानी पारुल के साथ ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: माय गॉड, कुछ लोग ना इतने मैजिकल हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही अपने वक्त से बहुत आगे पहुंचकर इतनी एक्सपीरियंशियल चीजें कर ली हैं कि आज तक अगर हम उसको ऐसे बाइफर्केट करें ना, हम नहीं कर पाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन AR रहमान सर एंड ताल का म्यूजिक। ये जो अभी अभी आपने गाना सुना है ऑन मिर्ची कैफे, मैं हूँ आपके साथ पारुल, ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची कैफे।
0: मतलब आप यकीन कर सकते हैं ये जो गाना है कहीं आग लगे लग जावे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सुभाष घाई खुद ही अपनी फिल्मों में बहुत ख्याल रखते हैं कि क्या म्यूजिक यूज हो रहा है। पहली चीज, उन्होंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट रहमान सर को दे दिया कि भाई तुमको जो करना है कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, देर आर क्लैप लूप्स इन दिस सॉन्ग कहीं आग लगे लग जावे। एक होता है 4/4 बीट, ठीक है, जो मोस्टली बॉलीवुड में सब जगह यूज होता है, उसको ब्रेक किया इस गाने ने। तीसरी चीज, और एक होता है स्टिकेटो फॉर्म ऑफ म्यूजिक और एक होता है लिगेटो। तो जो लिगेटो होता है ना, दैट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मोस्टली सब यूज करते हैं। स्टिकेटो होता है बिल्कुल शॉर्ट, शार्प और डिटैच्ड। तो ये फॉर्म यूज हुआ है इस गाने में। ये तो हुई सिर्फ कॉम्पोजिशन की बात। अगर आप कहीं आग लगे लग जावे का विजुअल याद करोगे या कभी देखोगे यूट्यूब पे जाके, तो आप ये देखोगे कि इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस चल रहा है वहां पे ऐश्वर्या राय बच्चन। हैट्स ऑफ टू हर। दिस इज टिल डेट मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स जो हमेशा हर चीज में अव्वल नंबर पे रखती हूँ मैं। व्हाट अ सॉन्ग गाइस। ऐसे गाने जो बनते हैं ना, तो वो साल नहीं, वो ऐसे सदियों, लाखों, जमानों तक चलते हैं और उनकी पहुंच कहां कहां तक जाती है और हमेशा अमेजिंग लगते हैं। एंड ऑन दिस नोट आई रियली नीड टू काम डाउन एंड से कि अब मेरा जाने का वक्त यहां से हो गया है, क्योंकि अब अगले एपिसोड के लिए मैं आपके लिए गाने तैयार करने के लिए जाने वाली हूं। अगर आपको कोई गाना ऐसा सुनना है जो आपके दिल के बड़ा करीब है, तो प्लीज मुझे लिखिए। आप मेरे मिर्ची के व्हाट्सएप नंबर 9930983983 पर मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो parul.world। प्लीज मुझे बताओ आपको कौन सा गाना सुनना है। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टेल समथिंग अबाउट दिस शो, आप मुझे कोई इनपुट देना चाहते हो, प्लीज राइट इन टू मी। और मैं यहाँ पर अगला गाना आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, विच इज इन द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ हर्षदीप कौर। ये भी ना गाना जो है, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके बड़े सारे मीनिंग है। सूफिज्म में इसका मीनिंग है कि सारी रात चरखा कात रही हूं तेरे इंतजार में। एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट, इसका मतलब है कि सारी रात काट रही हूं बस तेरे इंतजार में। तो मैंने ये गाना आपके लिए आखिरी आज के एपिसोड का इसलिए चलाया है कि आप ही मेरा इंतजार करो अगले एपिसोड तक, और मस्ती करो, खुश रहो और सुनते रहो मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपके दाशी आपके साथ वेलकम बैक टू द शो जी। और एक बड़े ही इंटरेस्टिंग ख्याल के साथ शुरुआत करते हैं आप कि जिंदगी में ना मैंने ये डिसाइफर किया है, ये मुझे समझ में आया है कि हमेशा परमिशन मत मांगो, बाद में फॉरगिवनेस मांग लो, है ना। कि मतलब कुछ भी करने जा रहे हो ना, तो अगर किसी से बोलोगे मैं ऐसा कर लूं क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करना, आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो उसको कर दो चीज को, और उसके बाद ऐसा करो अगर वो सही हो जाए तब तो ऑफ कोर्स हर कोई तारीफ करेगा, क्योंकि कोई सही चीज के तो खिलाफ जाना नहीं चाहता, है ना। लेकिन अगर वो गलत हो जाए तो बोलो ओहो अरे आई एम वेरी सॉरी यार, अरे वेरी सॉरी यार। हमेशा परमिशन मत मांगो, फॉरगिवनेस मांगो बाद में। यह गाना चंगेजी का शेर सुनो, कहते हैं कि गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं। अम्मा जब ऊपर वाले को लोगों ने ये फंडा चिपका दिया तो नीचे वाले तो चिल ही रहेंगे यार, मैं बता रहा हूं। डू नॉट आस्क फॉर परमिशन, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका ताशी आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? वो कौन देखेगा आके?
2: 17.5 रुपए
3: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: एक
3: चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कू।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कू।
0: मिर्ची मुर्गा,
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा।
0: उत्तर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
7: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका दाशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर मजहर इमाम साहब से। मजहर इमाम साहब दिल्ली में रहे और 1928 में इनका जन्म हुआ, 2012 में चल बसे और आधुनिक शायरों में बहुत विख्यात हुए। मजहर इमाम साहब का मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर है जो कि इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से इंसान जब अपने जिंदगी में खुश हो जाता है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरे लोग की क्या दिक्कतें हैं। शेर लिखते हैं कि हमने तो दरीचों पे सजा रखे हैं पर्दे। दरीचे मतलब जो ओपनिंग होती है, जो दरवाजे होते हैं, छोटा सा दरवाजा होता है, ठीक है। हमने तो दरीचों पे सजा रखे हैं पर्दे, बाहर है कयामत का जो मंजर तो हमें क्या। वाह, और कितने सटीक तरीके से मजहर साहब ने बता दिया कि भाई ऐसे ही होते हैं लोग। लोग जब अपने घर के अंदर सब कुछ ठीक होता है तो बाहर जो भी चल रहा हो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। हमने तो दरीचों पे सजा रखे हैं पर्दे, बाहर है कयामत का जो मंजर तो हमें क्या। आपको कितनी सच्चाई लगती है इस बात में? मुझे तो काफी दिखी। बहरहाल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने दाशी के साथ। It's hot.

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा, खूब मिलेगा, खूब
0: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और मेरे किसी बड़े ने कहा था ना कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, इट्स अबाउट हाउ यू से इट। आप क्या मांग रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं, जितना ये जरूरी है उतना ही और शायद उससे थोड़ा ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे वो मांग रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं। जैसे अगर आप किसी से कहें कि अरे हंसते क्यों नहीं हो यार, हंसा करो, वो पलट के कह देगा अपने काम से काम का नहीं मतलब रखते हो, रखा करो, है ना। लेकिन अगर आप उससे ये कहें कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो, कितना एक मासूम, कितना एक प्यारा तरीका है ये कहने का कि यार थोड़ा मूड को अच्छा करो, थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा लाइट हो जाओ, है ना। बस यही बात होती है कि कहने का जो तरीका है अब्दुल हामिद आदम साहब ने क्रैक कर लिया कि भाई कैसे कहना है कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
4: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
3: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100 on 100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी आपको नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड और ये जो नगमा है ये मेरे दिल के बड़ा करीब है क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह जी ने इसे गाया है इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स एंड आई एम सिंगिंग इट जस्ट फॉर यू तुमको देखा तो ये ख्याल आया

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मिर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: आए, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपके ताशी है आपके साथ एंड इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड दोस्त। एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपका जिंदगी का कोई भी वक्त किस तरह से गुजरेगा। अब आप अमीर कजलबाश साहब का एक शेर देखें जो कि परफेक्टली ये डिफाइन करता है, ठीक है। कहते हैं कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अब आप समझे क्या कह रहे हैं कि मतलब जिस जगह पे आके लोग ये बोलते हैं कि यार अब बस बहुत हुआ, उस जगह पे अगर आप ये कह दें कि नहीं अभी तो शुरुआत हुई है दोस्त, अब देखता हूं ये कैसे नहीं होती चीज, या फिर कैसे मैं इसी जगह पे रहता हूं, या फिर यू नो इतना मोटिवेशनल शेर लगा मुझे ये, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। ये शेर सुनाइए उस इंसान को जो कहता है कि अरे उर्दू शायरी में तो केवल रोमांस की बातें होती। नहीं दोस्त, रोमांस की बातें छोड़िए, आप देखिए कितना खतरनाक मोटिवेशन है। जिम जाओ भाई, लंगड़ा आदमी मैराथन दौड़ने चला जाए ये शेर सुनकर। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्ती उल्टा सीधा बोले जा रहा
0: है। उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा,
0: मेरी मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे ही नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
4: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल पर अब मौका है दस्तूर है
2: कविता कॉर्नर
1: कि आप कताशी सुनाए आपको आज की कविता हमारे कविता कॉर्नर में और आज की कविता आ रही है केदारनाथ अग्रवाल साहब की जानिब से और कविता का उन्वान है कविता का नाम है दुख ने मुझको लिखते हैं कि दुख ने मुझको जब जब तोड़ा दुख ने मुझको जब जब तोड़ा मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा जहां गिरा मैं कविताओं ने मुझे उठाया हम दोनों ने वहां प्रात का सूर्य उगाया और लिटरेचर होता किस लिए है यार आर्ट किस लिए होता है मेरे ख्याल से हमको मुश्किल समय में एक सहारा देने के लिए एक कंधा देने के लिए मुश्किल समय में भी हमें ये बताने के लिए कि ये मुश्किल समय सिर्फ हमारे साथ नहीं गुजर रहा और भी बहुत आए गए जिन्होंने ऐसा ही मुश्किल समय देखा है ऐसा ही मुश्किल समय जिया है और आप भी इसे निभाई ले जाओगे स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल आप कताशी है आपके साथ इट्स हॉट एक सहारा देने के लिए एक कंधा देने के लिए मुश्किल समय में भी हमें ये बताने के लिए कि ये मुश्किल समय सिर्फ हमारे साथ नहीं गुजर रहा और भी बहुत आए गए जिन्होंने ऐसा ही मुश्किल समय देखा है ऐसा ही मुश्किल समय जिया है और आप भी इसे निभाई ले जाओगे स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल आप कताशी है आपके साथ

0: Energy, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपके ताशी है आपके साथ, और सारे नशों से ऊपर जो नशा है ना वो है होप का नशा, उम्मीद का नशा। क्योंकि इंसान किसी भी हालत में हो ये नशा उसे जिंदा रखता है। सलीम कौसर की नज्म आपको सुना रहा हूं, उनवान है उम्मीद। कहते हैं कि देखो बाहर आग लगी है, देखो बाहर आग लगी है, दरवाजे पर नई रुतों की खुशबू रोती है, और अंदर बीते मौसम वीरानी पर हंसते हैं, फिर भी बेमंजर आंखें उम्मीद का झूला झूलती हैं, फिर भी दिल सन्नाटे को आवाज बनाया जाता है, किसे बुलाता है। आय हाय हाय, मतलब इतना सब कुछ है, पहले की तीन लाइनें इतना एक उदास माहौल बनाती हैं कि देखो बाहर आग लगी है, दरवाजे पर नई रुतों की खुशबू रोती है, और अंदर बीते मौसम वीरानी पर हंसते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद उम्मीद आती है और कहते हैं कि फिर भी बेमंजर आंखें उम्मीद का झूला झूलती हैं, फिर भी दिल सन्नाटे को आवाज बनाया जाता है, किसे बुलाता है। तभी तो मैं कहता हूं सबसे बड़ी ड्रग्स है उम्मीद। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
4: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
3: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आपका ताशी पलटे अपनी डायरी के सफ़े और कर दे आपको नज़र। और दोस्त, ये जो इंस्टाग्राम जनरेशन है ना, ये जो सोशल मीडिया जनरेशन है, हम सब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ना एक चीज़ हो गई है कि इंसान अपनी सच्चाई सोशल मीडिया पे नहीं डालता है, पूरी सच्चाई तो नहीं डालता है ना, वो अपने अच्छे पल डालता है, वो अपने हैप्पी पल डालता है। और उसकी फीड देख के ऐसा लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी में तो मज़े ही मज़े हुए जा रहे हैं, मतलब क्या ही सीन है इसका। इससे मुझे वो शेर याद आता है कयूम नजर साहब का, कहते हैं कि पूछो तो एक एक है तन्हा सुलग रहा। शेर देखें आप कि पूछो तो एक एक है तन्हा सुलग रहा, देखो तो शहर शहर है मेला लगा हुआ। कितना सटीक है ना ये, मतलब हमारी पूरी सोशल मीडिया जनरेशन का डिस्क्रिप्शन। पूछो तो एक एक है तन्हा सुलग रहा, देखो तो शहर शहर है मेला लगा हुआ। सो ट्रू। तभी भाई साहब सोशल मीडिया देख के अपनी जिंदगी को कभी जज मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता यार उस बंदे की पर्सनली लाइफ में क्या चल रहा है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका दाशी आपके साथ। इट्स हॉट, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Mehfil par aapka Tashi hai aapke saath aur hamare waqt ke likhne walon mein se mere ek bade pasandeeda shayar hain Abbas Tabish sahab. उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गजल आपके नजर कर रहा हूं क्योंकि मैं बस आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं. वो लिखते हैं कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं. ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं. है ना खूबसूरत. इनकी लेखनी और पढ़िएगा. ही इज वन ऑफ द बेस्ट. और तब तक के लिए नज़र है अगला नगमा. आपका ताशी है आपके साथ. इट्स हॉट.

0: Ion Mirci. It's hot.
1: Mirci.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
3: हेलो,
4: इज दैट वर्षा?
3: हु इज दैट?
4: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
3: क्या नाम बताया आपने?
4: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
3: थोड़ा बहुत गा लेती
4: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
3: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
4: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
3: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
4: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे। लव्स आजकल
1: कि आपका ताशी आपको मुखातिब कराए हमारे आज के लव्स से, जो है कासिद। अब कासिद का मतलब होता है पोस्टमैन। आजकल के बच्चे तो शायद इस किरदार की एग्जिस्टेंस ही ना जाने, लेकिन एक जमाने में लिटरेचर में भी पोस्टमैन का बड़ा रुतबा होता था, क्योंकि वही तो होता था जो संदेश इधर से उधर पहुंचाता था। दाग दहलवी साहब का एक बड़ा शैतान सा शेर है कासिद का इस्तेमाल करते हुए। कहते हैं कि कासिद ने कहा, याद वो करते हैं आपको, कासिद पोस्टमैन ने, कासिद ने कहा याद वो करते हैं आपको, हम खुश हुए तो कहने लगा कोस रहे थे। चाहे आप अलग उनसे जितना हो जाएं, मेरे ख्याल से हम सब पे अप्लाई करता है कि वो कैसे हैं, जानने का जो स्वाद होता है ना कि वो क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, मतलब उनकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी एक मजा आता है अलग सा। मिर्ची महफिल पर आपके ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: और माँ बाप के सिवा ऐसा सैक्रिफाइस आपके लिए शायद ही कोई और करे। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और परवीन शाकिर साहिबा का एक बड़ा उम्दा शेर पढ़ा हाल में मैंने और मेरा बहुत मन है कि आपसे उसको शेयर करूं, आपको भी सुनाऊं। कहती है कि वरना ये तेज धूप तो चुभती हमें भी है, वरना ये तेज धूप तो चुभती हमें भी है, हम चुप खड़े हुए हैं कि तू साहिबा में है। आय हाय क्या शेर है, मतलब सैक्रिफाइस का जो रुतबा है ना वो है इसमें कि वरना ये तेज धूप तो चुभती हमें भी है, हम चुप खड़े हुए हैं कि तू साहिबा में है। कौन होगा ऐसा जिंदगी में जो आपकी छांव के लिए धूप में रहेगा? मुझे नहीं लगता हमारे माता पिताजी के अलावा ऐसा कोई भी होगा। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप एंड यू कैन टॉक टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम मिर्ची दाशी MIRCHI TASHI। अगर आप डिसएग्री करते हैं बिल्कुल वी कैन टॉक अबाउट इट। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
4: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजीयर हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
3: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल.
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
7: FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: आपको नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड, और ये जो नगमा है ये मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह जी ने इसे गाया है। इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स एंड आई एम सिंगिंग इट जस्ट फॉर यू। तुमको देखा तो ये ख्याल आया।

समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी बात आप मुझसे करना चाहें तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। बने रहे मिर्ची पर, आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: mye helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

89.6 Mirchi 1. It's hot.

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्राई।

आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आँख।